ईरान एटमी मामलन ते अमेरिका सां ॻाल्हियुनि वारनि ख़बरुनि खे सख़्ती सां रद्द करे छॾियो आहे। ईरान जे परदेह तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त रिचार्ज थियल यूरेनियम अमेरिका हवाले न पियो कयो वञे। ॻाल्हियूं सिर्फ़ लिबनान समेत ॿिया जंगी महाज़ ख़तम करण बाबति हली रहियूं आहिनि। एटमी मामलनि ते हलंदड़ अफ़वाहुनि जो हक़ीक़त सां को बि वास्तो न आहे। पाकिस्तान जो वफ़द ॻाल्हियुनि लाइ अॼु ईरान वेंदो। पाकिस्तानी अख़्तियारनि जो ईरान वञण सां ॻाल्हियुनि जे बहितर नतीजनि जी उमीद आहे। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि जा मुस्बत इशारा मिली रहिया आहिनि। ॻाल्हियूं मुस्बत अंदाज़ में हलंदड़ आहिनि। असांजा इतिहादी हुन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। ॾिसजे त ईरान सां मुआदो थिए थो या न। ईरान सां मुआदो न थियो त वधीक फ़ैसिले जो अख़्तियार सदर ट्रंप वटि आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तहरान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराग़ची सां मुलाक़ात। ख़िते जी सूरतहाल समेत सालसी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिबि मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास सिराग़ची विच में जंग जे ख़ात्मे बाद तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि। मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदर ईरान जो ही ॿियो दौरो आहे। पाक जी सफ़ारती लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण ते इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी जो बुनियादी थंभ आहे। तरक़ी जो रस्तो पाकिस्तान ऐं चीन जो गॾियल ख़्वाबु आहे। ॿिन्ही मुल्कनि हमेशह हिक ॿिए जे बुनियादी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कयो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त ख़िते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में पाकिस्तान मर्कज़ी किरदारु अदा करे रहियो आहे। चीन बि पाकिस्तान जे सालसी वारे जी कोशिशुनि जी हिमायत कई आहे। गॾियल कोशिशुनि सां तरक़ी जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठो रहियो। वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती वधीक मज़बूत थी। सीपेक पाकिस्तान जे मईशत ऐं रोज़गार जी फराहमी लाइ अहम आहे। मुल्क में जटादार अमुन जे क़याम लाइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी। वतन जो अमुन अमान शहीदनि ऐं गाज़नि जी क़ुर्बानी जो नतीजो आहे। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल सैद आसिम अली जो GHQ में शहीदनि ऐं गाज़नि खे एज़ाज़ ॾियण वारी तकरीर ख़िताब। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि ऐं गाज़नि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल चयो त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख्रु आहिनि। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तान लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल पारां कानून लागू कंदड़ इदारनि जे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ भेड़ में लॻातार कार्रवाइयुनि ते वाखाण बि कई। खैबर पख

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

जी अश्विन, प्रोग्राम रोशन सुबह में तव्हां खां इहो असांजो इहो सवालु आहे, तव्हां ईद जी ख़रीदारी कहिड़ी कई आहे ऐं केतिरी कई आहे? तव्हां असां सां पंहिंजे दिलि जो अहिवाल ज़रूरु वंडींदव ऐं प्यार मां मोहबत मां तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे इनबॉक्स में। ऐं मोबाइल जे इनबॉक्स में मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, उते LRK लिखी करे स्पेस ॾींदव, यानी थोरी विथी ॾींदव, उते पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं असांखे तव्हां दिलि जो अहिवाल ज़रूरु ॾींदव त ईद जी कहिड़ी ख़रीदारी कई आहे ऐं केतिरी ख़रीदारी कई आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां असांजे फेसबुक ते असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया त असांखे फेसबुक जे लाइव पेज ते तव्हां असांखे मैसेज करे सघो था। आसान तरीक़ो आहे तव्हांखे फेसबुक ते मैसेज करण जो ऐं तव्हां कॉल करे बि असांखे पंहिंजो दिलि जो अहिवाल ॿुधाए सघो था। त असांजो नंबर आहे 0332132288। ऐं साईं जा वरी ॻाल्हि कंदासीं त दोस्ती ऐं एहसान मंदी कॾहिं बि विसारणु न घुरिजे। एहसान वारे जो हर हमेशह ख़ैरु घुरणु घुरिजे ऐं एहसान चुकाइण जो हक़ु अदा करणो आहे। को इंसानु असांखे रस्तो ॾिए थो त जो एहसान मञण में को बि ख़र्चु हर्ज न आहे। हिकिड़ो नंढो किसो अव्हां जे समातन ताईं। जंग में हिकु जेको आहे सो माण्हू आयो ऐं हुनखे कंहिं पंहिंजो बला खां, कंहिं नाग खां, कंहिं विषो खां बचाए थो, त उहो बि हुनजो हिकिड़ो पंहिंजो असांजे मथां अहसान आहे। जेकॾहिं कंहिंखे थधी छांव जो इंसानु विहारे थो, उहो बि हुनजो अहसान आहे। त जेतिरो थी सघे कंहिं दोस्त सां अहसान कंदा रहो ऐं चवंदा आहिनि त अहसान करणु थोरो करे तव्हां कंहिं बि खूह में फिटी कयो, छो त उहो तव्हांजो अहसान कॾहिं बि तव्हांखे कमु अची सघे थो। छो त जेको इंसानु आहे चवंदा आहिनि त थधो घड़ो पाण खे छांव में रखाराईंदो आहे, त जेको इंसानु सुठो हूंदो आहे, भलो हूंदो आहे, त उन उहो पंहिंजो पाण खे भलो न सॾाए त बहितर आहे। ऐं इंसान जा उहे कम उनखे भलो सॾाईंदा आहिनि ऐं ॿी हंधि उहा तारीफ़ थींदी आहे ऐं उनखे माण्हू चङो चवंदा आहिनि त यार माण्हू ॾाढो भलो आहे, माण्हू ॾाढो चङो आहे ऐं हुन जा कम ॾाढा भला आहिनि। त इहा आहे असुल में हुनजी कमाई ऐं चङाई थियल।

हाजिया समय तालिबुल मौला जी शायरी बेहतरीन तमाम सुनो अंदाज आवाज रोना लैला जो तवा के जरूर पसंद आया हों तो समय प्रोग्राम रोशन सुबह जारी सारी है तवाजो असो साथ यारह बजे की जरूर है गाल बोली जरूर कदासी वक्त हल्दी न्यूज़ ब्रेक की तरफ कमर्शल ब्रेक की तरफ कदें भी ना लवन जो वापस जरूरी।

ईरान एटमी मामले ते अमेरिका सां गालन वारन खबरन के सख्ती सां रद्द करे छियो आए ईरान जे परदेह तर्जुमान इस्माइल बकाई चो आए त रिचा थियल यूरेनियम अमेरिका हवाले न पियो के वञे गालियो सिर्फ लिबनान समेत बिया जंगी मास खत्म करण बाबत हली रहियो आए एटमी मामले ते हलंदड़ अफवाहुनि जो हक़ीक़त सां को बि वास्तो न आहे। पाकिस्तान जो वफद गालियन लाइ अॼु ईरान वेंदो। पाकिस्तानी अख़्तियारनि जो ईरान वञण सां गालियुनि जे बहितर नतीजनि जी उमीद आहे। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां गालियुनि जा मुस्बत इशारा मिली रहिया आहिनि। गालियूं मुस्बत अंदाज़ में हलंदड़ आहिनि। असांजा इतिहादी हुन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। ॾिसजे त ईरान सां मुआदो थिए थो या न। ईरान सां मुआदो न थियो त वधीक फ़ैसिले जो अख़्तियार सदर ट्रंप वटि आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी तहरान में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास सिराग़ची सां मुलाक़ात। खिते जी सूरतहाल समेत सालसी वारनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिबि मोहसिन नक़वी ऐं अब्बास सिराग़ची विच में जंग जे ख़ात्मे बाद तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि। मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदरि ईरान जो ही ॿियो दौरो आहे। सफारती लाॻापन खे 75 साल मुकमल थियण ते इस्लामाबाद में तकरीब। सदर आसिफ अली ज़रदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त चीन सां दोस्ती पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी जो बुनियादी थंब आहे। तरक़ी जो रस्तो पाकिस्तान ऐं चीन जो गॾियल ख़्वाबु आहे। ॿिन्ही मुल्कनि हमेशह हिक ॿिए जे बुनियादी मुफ़ादनि जो दिफ़ा कयो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त खिते में ईरान ऐं अमरीका तकरार जे हल में पाकिस्तान मर्कज़ी किरदारु अदा करे रहियो आहे। चीन बि पाकिस्तान जे सालसी वारे जी कोशिशुनि जी हिमायत कई आहे। गॾियल कोशिशुनि सां तरक़ी जा रस्ता तय कंदासीं। पाकिस्तान पहिरियों इस्लामी मुल्क आहे जंहिं चीन खे तस्लीम कयो ऐं चीन बि हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां जबल जीअं बीठो रहियो। वक़्त गुज़रण सां गॾोगॾु ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्ती वधीक मज़बूत थी। सीपेक पाकिस्तान जे मईशत ऐं रोज़गार जी फराहमी लाइ अहम आहे। मुल्क में जटादार अमुन जे क़याम लाइ दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग क़ौमी अज़म सां जारी रहंदी। वतन जो अमुन अमान शहीदनि ऐं गाज़ियुनि जी क़ुर्बानी जो नतीजो आहे। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे। फील्ड मार्शल सैद आसमुद्दीन जो जीएचक्यू में शहीदनि ऐं गाज़ियुनि खे एज़ाज़ ॾियण वारी तकरीब जो ख़िताब। एसपीआर मूजिबि फील्ड मार्शल शहीदनि जे वारसनि ऐं गाज़ियुनि खे फ़ौजी एज़ाज़नि सां नवाज़ियो। फील्ड मार्शल चयो त शहीद ऐं गाज़ी क़ौम जो फ़ख़्रु आहिनि। शहीदनि जी इज़त ऐं क़ुर्बानी हर पाकिस्तानी लाइ मुक़दस अमानत आहे।

साजिया समिन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां सुनन जे नाला अवां गुलाब जा गुल आहियो ऐं अवां प्रोग्राम जा सिंगार आहियो ऐं तव्हां जा नाला खणंदासीं हिन तव्हां जेके बकरा ख़रीद कया आहिनि ऐं तव्हां जेके ढोर ढगा ख़रीद कया आहिनि उसाईअ लाइ ऐं तव्हां बूट कपिड़ा ख़रीद कया आहिनि ऐं जिन न कया आहिनि त मुंहिंजो अवां सभिनी खे हिकिड़ी गुज़ारिश आहे अवां खे त पंहिंजी ख़रीदारी खां अॻु में पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखो उन ग़रीबनि जो उन मिसकिननि जो उन यतीमनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखो जिन कपिड़ा न वरिता आहिनि जिन बूट न वरिता आहिनि ऐं उन ॾींहुं यानी ईद वारे ॾींहुं ओज़ा वारे ॾींहुं उन सभिनी मिसकिननि जो ख़्यालु ज़रूरु रखिजो ऐं पाड़े वारनि खे पंहिंजे दोस्तनि खे पंहिंजे मिटनि माइटनि खे न विसारिजो उन गोश्त खां उन पतीअ खां उन हिसे खां जेको हुनजो हिसो ठहे थो ऐं सभिनी बसि मां वधीक तव्हांखे नथो चवां ऐं तव्हांजा नाला खणा थो असांजे असांजा दोस्त आहिनि मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी सोमवार सोलंगी ऐं अरबाब कुंभार ऐं डॉक्टर शहज़ाद अज़ीज़ सुमरो डॉक्टर ज़मीर मीराणी तारिक मीराणी नौंदरो चौक लाड़काणे खां इरशाद कुराई बैतल माल कॉलोनी लाड़काणे खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली झंडी मरे खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया झंडो मरी खां ऐं इमाम लिनो बमरो नारो साले पट खां मसूद जमाली बचल शामियाणी सखर खां ऐं उन सां गॾु आहिनि मोहम्मद अहसन गुल हसन ऐं बाबल ख़ान मीराणी जमाली ऐं नूर हुसैन तुनियो बदीन खां प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ जी महिरबानी अतार मोहम्मद मीराणी रोहिड़ी खां प्रोग्राम ॿुधे पियो लख कुर्ब भाउ जा इमाम लिनो बमरो ॻोठु नबीदाद बमरो नारे खां ऐं रांझन कोरी कोरी ॻोठु मीरपुर ख़ासि खां ऐं उन सां गॾु आहिनि अली जूणे जो ऐं वॾेरो ख़ान मोहम्मद जूणे जो सैद इंदाज़ अली शाह बुखारी पनियाकिल खां ऐं हाफ़िज़ लखमीर ढिलो मोरे खां प्रोग्राम ॿुधनि पिया दोस्तनि जी वरी महिरबानी ऐं असां वरी अवां दोस्तनि लाइ मास्टर मंज़ूर जो कलाम आहे सिंगार जा समूरा हथियार यार तो वटि गॾिजी ॿुधूं पिया ऐं कयूं पिया उमेदु त अवांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे. तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं, ऐं असां तव्हांजे इंतज़ार में आहियूं. इनबॉक्स में पंहिंजा नाला मोकिलियो, फेसबुक ते पंहिंजा नाला असांखे सेंड कयो, ऐं असांजे तव्हां मोबाइल कॉल ते बि पंहिंजो नाला लिखाए सघो था. असां नंबर आहे 0333-21-322-88. तव्हांजो असांखे इंतज़ारु रहंदो. हिन वक़्तु असां हलूं पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं.

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाने अवाजे पेंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण वधिक मशोरे रबते के लिए 0327-99-84-768।
0: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पर यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की। बहुत दुख देखे इन्होंने 2 सालों में।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सांवली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
1: हमारे शहर सखर में होम्योपैथिक ने 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ

जी असमिन कुछ दोस्तों जहाँ वही नाला अवं जी उम्मीदों अवं के इंतजार हों अस नाला प्रोग्राम में शामिल थे छो तो असो प्रोग्राम है वो पूरे नेटवर्क जो है जी एफ एम 88 जो नेटवर्क तमाम वो पूरी सिंध जो नेटवर्क है दोस्त कुछ रहल जैसे नाला खड़ा हल्दी मोहम्मद इकबाल लाशारी जलोरी अमीरपुर खास का आसिफ अली चाचड़ वासिफ बुकटी माहौटन का यासमीन मलक अमीरपुर खास का फ़कीर महरम जतोई थरड़ी आगा खान जतोई का चनेसर भेण आज़ाद भेण मोरे का जोहेब कटबर जिनलाब्दीन मसहब कटबर रहमतपुर महल लाड़काणे का भा वकार जतोई यूनिस जतोई प्रदीप राजा पीरशेर का भाईरन की वही मेहरबानी गोठ मोलिरणे माशी लगे वडन मरण का जमीर हुसैन सोलंगी मुख्तियार अली सोलंगी जहीर अब्बास सोलंगी नंढड़ो वफा हुसैन गोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली गुलाम रसूल कुंभर गोठ अहमद खान लाशारी लगे धूणन खां न्याज अली लाशारी नंढड़ो शाहजेब लाशारी गोठ हसू जतोन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद जतोई नसरला जतोई गोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अहसन फहद अहद शादाब चांडियो गोठ छुटो मक्सी लगे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाफ सखर लगे सब्जी मंडी खां एजाज अली जुणे जो मुनीब रहमान मुजीब रहमान जुणे जो यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद महेसर फ़कीर एजाज अली कलोड़ो डॉक्टर रिजवान अली माजिद अली जतोई निसार जतोई हरसा जी गढ़ी कोरकाणन खां सूमर फ़कीर कोरकाणी असांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं हीउ ख़ूबसूरत नगमो आहे अव्हां दोस्तनि जी नाम पिया कयूं

जी असां प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजा दोस्त शामिल थियण लाइ फ़ोन कई, मंज़ूर जलबाणी, मोहसिन अहसन जलबाणी ऐं नंढड़ी पोपरी ॻोठु गाज़ी ख़ान जलबाणी तालुके वारा या तालुको नसीराबाद वञो ॻोठु हूंदो, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं साईं जा अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पूरे मुल्क में, पूरे सिंध में, असांजे नंढनि वॾनि शहरनि में, ॻोठनि में हिन वक़्तु जेको पोलियो मुहिम हले पई उनजो असांखे ज़रूरु साथ ॾियणो आहे। जेका बि पोलियो टीम असां वटि अचे पई, असांजे ॻोठनि में अचे पई, असांजे दर दर ते अचे पई, असांजे घर ॾे अचे पई, नंढनि ॿारनि खे पोलियो जे मूज़ी मर्ज़ खां बचाइण लाइ जेके पोलियो जा फुड़ा पीआरिया वञनि पिया उन्हनि जो तव्हांखे असांखे साथ ॾियणो आहे। तो छो त पूरी दुनिया मां पोलियो जो मर्ज़ जेको आहे ख़तमु थी चुको आहे, पर किथे किथे असांजे मुल्क, प्यारे मिठड़े मुल्क पाकिस्तान में, किथे किथे अञा इहे मर्ज़ थोरो ज़ाहिर थी पए पियो। उन लाइ इलाजु आहे, इलाजु सुनत आहे, इलाजु करणो आहे, ऐं असांखे उन टीम जो असांखे साथ ज़रूरु ॾियणो आहे। ऐं पंहिंजे उन्हनि पंजनि सालनि जे अंदरि जेके असांजा नंढा ॿार आहिनि, असांजा प्यारा आहिनि, असांजा गुलाब जा गुल आहिनि, उनखे असांखे पोलियो जा फड़ा ज़रूरु पीआरणा आहिनि, उनजो साथ ज़रूरु आहे।

हा जी असां कुझु दोस्त जा नाला रहिजी विया, उहे असां वहां ताईं पहुचाईंदा हलूं। असांजो बरकत अली जमाली बलोच आहे पंहिंजे जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां, ऐं दोस्त आहिनि मोहम्मद ख़ान कुंभार, वफ़ा जमाल कुंभार, सरदार मोहम्मद अली कुंभार हाले पुट आहे स्टाप मीरपुर ख़ासि खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी त समिन इन ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे पियो पंहिंजी पुॼाणी ते। इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान नेमत अला जुड़ी जो खे अलाह निगाहबान।

असांजो रिचार्ज थियल यूरेनियम हर हाल में कब्ज़े में वठंदासीं। हुन मामले ते रिचार्ज थियल यूरेनियम अमरीका हवाले न पियो कयो वञे। ॻाल्हियूं सिर्फ़ लिबनान समेत ॿिया जंगी महाज़ ख़तम करण बाबति हली रहियूं आहिनि। हेठवी मामलनि ते हलंदड़ अफ़वाहुनि जो हक़ीक़त सां को बि वास्तो न आहे। पाकिस्तान जो वफ़द ॻाल्हियुनि लाइ अॼु ईरान वेंदो। पाकिस्तानी अख़्तियारनि जो ईरान वञण सां ॻाल्हियुनि जे बहितर नतीजे जी उमेद आहे। अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां मुतफ़िक़ आहिनि त ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। ॾिसजे त ईरान सां मुआदो

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

तिखा घुर्ज मूंखे चुभन था अंदर में, तिखा घुर्ज मूंखे चुभन था अंदर में, मगर मूंखे प्यारा लगन था अंदर में। ही मुरकूं ही महमीज़ूं ऐं चालूं सॾण जूं, ही मुरकूं ही महमीज़ूं ही चालूं सॾण जूं, ही अच वञ संभालूं ऐं घूरूं सॼण जूं, उहे प्यार मुंहिंजे विझनि था अंदर में, तिखा घुर्ज मूंखे चुभनि था अंदर में। जवानी आहे तुंहिंजी को रब जो ख़ज़ानो, जवानी आहे तुंहिंजी को रब जो ख़ज़ानो, मिलण जो थो महजूर ठाहे बहानो, वसल जा बहाना ठहनि था अंदर में, तिखा घुर्ज मूंखे चुभनि था अंदर में, मगर मूंखे प्यारा लगन था अंदर में। GFM नेटवर्क प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती साण करे मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हर जुमे जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं GFM नेटवर्क तां हुनजो कयो वेंदो आहे, जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं, अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं उन खां अलावा तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी। त मुंहिंजा तॾिणो कहिड़ा हाल अथव? ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? ख़ुशि ख़ाश वेठा आहियो? ईद जूं तयारियूं अव्हां जूं कीअं हली रहियूं आहिनि? कुर्बानीअ जी ईद आहे ऐं वॾी ईद आहे ऐं तमामु ख़ुशियुनि वारी ईद आहे।

जी मुझे मिठा ते कुर्बानी की ईद है ई तमाम वही ईद है खुशियन वाली ईद है अल्लाह ताला तमाम सभी के कुर्बानी करण की तोहफी के ताफरम है अल्लाह ताला तमाम सभी के कुर्बानी वाली ईद जो खुशियों नसीब फरमाए तो मुझे साई तुझे इन प्रोग्राम में शामिल थी सोता बजरिया एस एम एस करने तरीकेकार सहलो आसान पे मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हल्या वो ए मारो लिखो स्पेस दियो स्पेस का लिखो पाँचों नालो पे गोठ शहर जो नालो लिखी कर मोकिलो असान हाँ 888 1 ते तो मुझा मिठा सही कुर्बान इस्लाम जो अहम इबादत में एक अजीम इबादत है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेमिसाल फरमा बरदारी के याद में अदा कई वी है अल्लाह पाक जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना प्यारे पुट के कुर्बान करने हुक्म दिनों हो तो उन बिना कें हबक के अल्लाह के हुक्म जो आडो सिर झुको अल्लाह पाक संदस इखलास फरमा बरदारी दिसी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जो दुम्बो जैसे चबो है दुम्बो मोकलो उन्हें याद के ताज़ो करने के लिए मुसलमान हर साल ईद उज़ा ही कुर्बानी पिण कहन कुर्बानी जो असल मकसद सिर्फ जानवर दुबे करना अथवा मुझा साई पर अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करी ख्वाहिश के काबू कर इखलास पैदा करना है कुर्बानी इंसान के इज़हार हमदर्दी ए भाईपी जो दर्स दिए थी कुर्बानी जो गोश्त गरीबन मिस्किनन ज़रूरतमंदन में विरहायो वेंदो आहे जैसा मोहब्बत ए बराबरी जो पिण अहसास थींदो अथव इस्लामी कुर्बानी हर साहिब हैसियत मुसलमान ते वाजिब आहे कुर्बानी जे लाइ सेहतमंद ए बेऐब जानवर चूंडियो वेंदो आहे जीअं इबादत जो मयार बहितर रहे कुर्बानी वक़्त सफ़ाई एहतियात इस्लामी उसूलन जो पिण ख्याल रखियो वेंदो आहे अॼु जे दौर में कुर्बानी

अलाए जी छामी राधी आ अलाए जी के सारा दिया जी हाँ बिल्कुल उन मर्जी है असो इबादतों असाजतों निबड़तू जी भी उनके दिसो है दुनिया जो हर उ इंसान है वह अमल जो करे तो सभी खबर मुझे रब करीम के है अल्लाह ताला जे दर दुआ है अल्लाह ताला असें तौफीक अता फरमाए असें एक सुठो बेहतर इंसान बनाए तो दोस्तों दोस्तों मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल कह हल्दी गडो गुन अग में तक ये बुधा हल्दी तुम प्रोग्राम में मैसेज के जरिए शामिल मैसेज के तरीकेकार सवलो अव आसान अव मोबाइल फोन राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एमआरओ लिखो स्पेस दियो स्पेस का लिखो पांजो नालो पांजे गोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकलियो असान हां 888-1 ते छाते मोकलीदा 888-1 ते तो वकील मुर्तज़ा मुगेरी पंजे प्रोग्राम में पे कंबर खाई चवन था प्लीज अस फायजा अली के आवाज में कलाम दुराया हाजिर मुझा मिठा साई तक पसंद कलाम जरूर बुधाइंदा इंतजार कजो अजय प्रोग्राम जो आगाज थे मुझा पीरी दादू खान अहमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई फकीर इनायतुल्ला जतोई पंजे प्रोग्राम मेहरबानी प्यारा तुम प्रोग्राम में शामिल थे लख गुर्ब लख एहसान अवजा तमामद मीरानी रोहड़ी का प्रोग्राम बुधे तो गुलाम हुसैन संदीरों की आवाज जी अदा जन फरमाइश कई है प्यारा हाजिर तमाके इस पिछली प्रोग्राम में भलीकार चवां तो तमाम जे लाए यो भी चवंदस तहांगे तहांजे पसंद जो कलाम जरूर बुधराय पु गुट नबी दाद बमरो नारे का इमाम नु बमरो वन प्रोग्राम दे पे जो तो प्रोग्राम ला जवाब आहे अदा गुलाब अदा मेहरबानी भा मुजा ता मुजे प्रोग्राम के पसंद के ता अदा नबी दाद बमरो जो गोठ तुम है इमाम दिनों बमरो अच्छा अदा इमाम दिना अल्लाह से खुश रखो मुझे ख्याल में तुम वेहो मुझे प्रोग्राम में शामिल थे उन स्पेशली मुझे तरफ का तक खोड़।

वफ़ा भलीकार चवां थो मौला तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां जॾहिं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहियो त तमामु घणी असांखे ख़ुशी थींदी आहे। ॻोठु अली मोहम्मद उमराणी लाड़काणे खां वहीद अली उमराणी पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, चए थो अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम अदा वहीद, कहिड़ा हाल अथई अबा? ठीकु आहे, तबियत सही अथई, चए थो। उन सां गॾु आहे निसार हाकिम अली ऐं निंढड़ो सईद अली ऐं ग़ुलाम रसूल उमराणी ऐं मुनवर मोलाई जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि। हाज़िर प्यारा मुनवर मोलाई बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। निंढड़े खे मुंहिंजे तरफ़ खां खोड़ सारो प्यारु ॾिजो ऐं बक़ाया जेके तव्हांजा दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि मुंहिंजे तरफ़ खां खोड़ सारा सलाम छॾिजो। ऐं महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। अच्छा, प्लेलिस्ट में हिकिड़ो सॉन्ग आहे अहमद मुगल जी आवाज़ में, ॾाढो सुठो सॉन्ग आहे, मुंहिंजे पसंदि जो आहे, अचो त हुनखे गॾिजी इंजॉय करे था वठूं।

0: फ्री से रिश्ता जोड़ो सुनते रहो GFM 88.8 मोरो की आवाज।
1: It's 11:30 AM. This time check is
2: brought to you by
3: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
4: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: tomado.
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाउरनि ऐं भेनरुनि खे प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ में भलीकार त मुंहिंजा बीठासीं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं हर जुमे जी ऑन एयर कयो वेंदो आहे पूरे नेटवर्क ते, जंहिंमें असां सां गॾु हूंदा आहिनि सखर वारा प्यारा माण्हू, लाड़काणे वारा प्यारा माण्हू ऐं मोरे वारा मिठा माण्हू, मीरपुर ख़ासि वारा मिठा माण्हू, मेरापुर वारा मिठा माण्हू, मटियारीअ वारा, सकरंड वारा ऐं मातरीअ वारा मिठा माण्हू. अॼु मातरीअ वारनि जा मैसेज बि पैनल ते कोन पिया अचनि. सखर वारा बि अलाए किथे घुमनि. अबा आयो जहिड़ा ऐं ईद जे मसरूफ़ियातुनि में आयो छा? तमामु घणा बिज़ी लॻा पिया. ऐं महिरबानी आहे सभिनी दोस्तनि जी. कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि, उहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलूं. चए थो आदाब गुलाब ख़ान, कॾहिं दादू मोरो पुल ते तव्हां अचो, असांजे तरफ़ खां दावत अथव, अचो त तव्हांखे सिंधी दरिया जी, सिंधू दरिया जी फ्रेश मच्छी खारायां. वाह साईं वाह. अदा मोहम्मद हुसैन, यकीन कयो जेका मच्छी आहे न मुंहिंजी तमामु घणी पसंदीदा आहे, ऐं ख़ासि तौर ते तलाउ वारी न दरिया वारी मच्छी. असां वटि ईंदा आहिनि तव्हांजे ॻोठ जा कुझु मच्छी खणी, मच्छी फरोश ईंदा आहिनि. उन्हनि खे मुंहिंजो चयल हूंदो आहे, बाबा महिरबानी कयो ओरिजिनल मच्छी ऐं सा बि वॾी 2-2.5 किलो जेतिरी हुजे न उहा मूंखे ज़रूरु ॾींदा, की वॾे शौक़ सां खाईंदो आहियां. इनशाला अदा हयाती रही त ज़रूरु ईंदासीं. दादू मोरो पुल ऐं मुंहिंजी ऑफिस FM88 तमामु घणो को परे न आहे, 4-5 किलोमीटर जो ई पंधु आहे. दादू रोड ते ई आहे ऐं बल्कि दादू बाईपास ते ई असांजी ऑफिस आहे. ऐं तव्हां समेत जेके असांजा लिसनर्स आहिनि, उहे अगरि असांजी FM रेडियो ते अचणु चाहिनि था, मिलणु चाहिनि था, विज़िट करणु चाहिनि था, त मोस्ट वेलकम. असांखे तमामु घणी दिली ख़ुशी थींदी. ऐं अदा मोहम्मद हुसैन, तव्हांजी दावत मूंखे क़बूलु आहे. इनशाला ताला हयाती रही त मुलाक़ात ज़रूरु थींदी. बाक़ी दादू मोरो पुल तां असांजो हर 5-8 ॾींहं क्रास थींदो रहंदो आहे. पुराणे कार में आयासीं, वियासीं हलिया, ऐं न को मां तव्हांखे सुञाणिया थो, न मूं वटि तव्हांजो नंबर आहे, न मां तव्हां मूंखे सुञाणियो था. थी सघे थो पाड़ेसरी आहियूं, हिकु ॿिए खे ॾिठो बि हुजे, पर सुञाणियूं त कोन था. दादा गुलाब कहिड़ो आहे, दादा हुसैन कहिड़ो आहे. महिरबानी दादा, तव्हांजे खुलूस जूं खोड़ सारी मोहबतूं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे. मीरपुर ख़ासि खां फरीद महर पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो सलाम त वालेकुम सलाम. ऐं अदाजन अब्दुल अदाजन साईं अब्दुल्ला महर खे सलाम चवनि पिया. दादा अब्दुल्ला, तव्हां अगरि हींअर हिन वक़्तु असांजो FM नेटवर्क ॿुधी रहिया आहियो मीरपुर ख़ासि खां, त तव्हांखे फरीद महर जे तरफ़ खां खोड़ सारा सलाम मिलिया आहिनि. महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया. मुंहिंजे तरफ़ खां खोड़ दफ़ा तव्हांखे भली कार. इरशाद अली लकारी ॿुधे पियो मीरपुर ख़ासि खां, बेलारो शाख आहे जिथां खां अदाजन ॿुधनि पिया. ऐं सराइकी सॉन्ग जी अदाजन फरमाइश कई आहे. हाज़िर मुंहिंजा मिठा, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदुसि. दिलि जाए रखे छॾियो. मेमण माला मोरा खां, मोरो खां साथ राहिब ऐं माशूक मेमण मोराई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया. उन्हनि सां ग्राहे मुमताज़ मेमण ऐं काशिफ हुसैन मेमण हक मौजूदु त सदा मौजूदु. मुंहिंजा साईं महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो. तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में सदाई मुंहिंजे प्रोग्राम में ईंदा आहियो ऐं शामिलु थींदा आहियो, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे. ॻोठु हाजी ग़ुलाम ख़ासि केली लॻ झंडो मोरीअ खां क़ुर्बान अली ख़ासि केली. अच्छा हा, अदा क़ुर्बान, महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो. तव्हां मुंहिंजे प्रोग्रामनि में शामिलु थींदा आहियो, स्पेशली तव्हांखे मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो. ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो. ऐं दादू मोरो पुल खां अदा हुसैन जो ॿियो मैसेज, ऐं अदा सां गॾु आहे मज़हर अली मलाह ऐं अदा मोहम्मद हुसैन. महिरबानी प्यारा, पोइ साॻी ॻाल्हि अदा जन लिखी आहे मच्छी खाराइण वारी. ॾिसो था मच्छी कॾहिं था अदा हुसैन जी असां खाऊं. त अदा महिरबानी आहे भाउ हुसैन, तव्हांजो इहो ख़ुलूस आहे, प्यार आहे. अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे. ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था. जेके बि असांजा लिसनर्स जेके हिन वक़्तु असांखे ख़ामोशीअ सां ॿुधी रहिया आहिनि, उनखे चवंदासीं बाबा पंहिंजी मोबाइल फ़ोन खणो, उन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहा 888-1 ते. अच्छा, सॉन्ग प्ले करिणो हुयो शाहिद बबर जो, ऐं प्ले थियो आहे शमन अली मीरारीअ जो. अचो त इंजॉय कयूं था.

सिंध पुलिस सूबे में अमन कायम करण में नाकाम तकरारन ते बेबुंजो न आयो। मुख्तलिफ़ शहरन में औरत समेत छह जणा कतल, एक जणे जो तशद थियल लाश थे। बख्शापुर फरसा भंगवार बरादरी की बिंदड़न में छेड़ो, औरत समेत टे जणा कतल। गोठ सुफान जाफरी में पुराने तकरार था थियल झेड़े में मेहार भंगवार गुलाम फरीद एक औरत मारजी वही। साल अग बिन्हीं धरन में चोरी के मामले का थियल झेड़े में एक जणो मारजी वो। पलांद में अज एक औरत समेत तीन जणन के कतल कर वो। कश्मोर भरसा में कच्चे में कोश ए शरदुर में झेड़ो थो, बजना कतल एक जख्मी। हाजी खान थाने के हद में पुराने तकरार था झेड़ो थो। गोली लगने सबब भूरो शहर ए नूर मोहम्मद कोश मारजी वह, मारूफ शहर जख्मी थी पो। गंबर भरसा पर सईद भट्टी डंडा हणी कतल कर वो। न्यू सईदाबाद भरसा नौजवान के घर में तशद थियल लाश हथाय, टिन जवाबदारन की गिरफ्तार कर वो। गोठ शादा जमाली वासी अब्दुल लतीफ़ जमाली जो घर में तशद थियल लाश मिलो। पुलिस मूजिब नौजवान के तशद कर खुटा दई कतल कर वो है। उमीद अली जमाली, रांझण ए अलीगुल जमाली के गिरफ्तार कर वो है।

पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में जारी छिकतान के खात्मे के लिए कोशिशों तेज कर छियं। घर वजीर मोहसिन नकवी की 24 कलाक दौरान ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी से तेहरान में भी मुलाकात। तेहरान ए वाशिंगटन में इम्कानी वायदे बारे तजवीजों से गाल। ईरानी न्यूज एजेंसी फारस मूजिब बिन्हीं अखबार अमेरिकी ईरानी तजवीजों से तफसीली गाल कई है। जरिए मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफद अज तेहरान वही सके तो। ईरान पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका से गाल जारी रहने की तस्दीक कर छी। अमेरिकी तजवीजों से तेहरान नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो। मुहिदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज। ईरानी खबर इदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गाल जारी है। बई धुरू मुहिदे के हतमी शिकिल देने के लिए एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचा रही हैं। ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा तीन मुहिदो तय ना थो। इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के अहम दौरे से सुभा बीजिंग रवाना थो। परदेही तर्जुमान पारा तस्दीक ताहिर हुसैन इंदिरा भी चवे तो वजीर आजम सुभा 26 मई तीन चीन में मौजूद होंद। सदर शी जिनपिंग वजीर आजम ली चांग ए बेन से मुलाकातू कद। पाकिस्तान जो विचोभर में छिकतान के खात्मे के लिए कोशिशों जारी हैं। घर वजीर मोहसिन नकवी तेहरान जहा भी अहम दौरा कया। नायब वजीर आजम इसहाक दार भी मामले के आलमी अगवान से राबते में है।

कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी अॼु शाम रोड जो बाज़ाबता इफ़्तिताह कंदो। वरी वज़ीर बरादरी शाह चयो आहे त शाहराह भुट्टो शहीद बेनज़ीर जो मनसूबो हो जंहिंखे सिंध हुकूमत मुकमल कयो। शाहराह भुट्टो कराचीअ जी मुआशी तरक़ी, जदीद ट्रांसपोर्ट ऐं शहरी सहूलियतुनि जे नई सुञाणप बणबो। कराची सिंध जी जान ऐं पाकिस्तान जी दिलि आहे। शहर जी तरक़ी असांजी तरजीह आहे। 39 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपियनि जी लागत सां मुकमल कयो वियो।

सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में आईन तहरीके तप्त ते पाकिस्तान जे सनअत ते महांगाई ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा। नवाब शाह जेका बाद सेवन और शरफ फेरो ते ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा कया विया। कंबर में जे वाई तरफ़ां वधंदड़ महांगाई ऐं हुकूमत जे आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। तलहार में जमात इस्लामी पारां महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो।

0: साले पट में खुलल गटर अवाम के लिए अदा बढ़ल बारन ए जानवरन के किरण वा वाक्य विरोध जो मामूल शिकायत बावजूद टाउन इंतजामिया खुलल गटर बंद करने के लिए तैयार ना है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अमाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राब्ते जे लाए 0327-99-84-760।
4: कमी गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो, बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो, बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो, घणो पानी वापरायण जी आदत ठायो, ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो, हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो। ई पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO आई स्टार नेटवर्क जे तावुन सा आवाम जे आगाही लाए पेश कयो वयो।
5: पहजो शहर पहजो घर सकरन आई सकरन जो आवाज
6: GFM 90.8।

बजे ताई राबते चलाए 0331305374 9। याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते 12 बजे खां शाम जो 4 बजे ताई मेहड़ शहर में मुमताज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तरफा मुफ्त चका सकंदा। एड्रेस लग हाई स्कूल नंबर 1 VIP रोड मेहड़। खुशखबरी लम्स हॉस्पिटल जामशोरो मलेशिया चाइना मां तालीम याफ्ता नंदन वात जी बीमारियों जो माहिर सर्जन प्रोफेसर

0: जो चई बजे ताई वेझो इमाम मेडिकल सेंटर जेकबाबाद में मरीज
1: लग झंडो मोरी खां कुर्बान अली खास के लिए था कुर्बान मेहरबानी प्यारा तवा से पैगाम ही शामिल था लेखक गुरु लेखक एहसान।

सलाम भाई साहब, कैसे हो? प्रोग्राम नाइस है। शाजिया शेख फ्राम पीरज गुड खा मुझे प्रोग्राम दे पी त वालेकुम सलाम अदी। मेहरबानी तमाम मुझे प्रोग्राम के पसंद के व्या आई अदी चवे थी भाई सिस्टर सुमेरा क्यों नहीं आती है शो मी सॉन्ग प्ले करो मास्टर मंजूर का। त भाजी सुमेरा पांजे जाती मसरूफिया सबब कुछ वक्त का वठी FM 88 सा जुड़ल ना है, पर इंशाल्लाह जरूर अची वेंदी। आई भाजी सुमेरा बेस्ट आरजे है, न सिर्फ तमाम बल्कि असन समूरन लिसनर्स जी तमाम बेहतरीन खोड़ सारा फैंस आज मेहरबानी अदी तुम प्रोग्राम में शामिल थे। शमसुद्दीन गोपांग कंबर खां मैंने प्रोग्राम में चो अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, मेहरबानी मिठा तुम प्रोग्राम के पसंद के भाई। वालेकुम अस्सलाम, मुझे तरफ का तहां के भलीकार मुशर्रफ 78 मोरी खां राजा हमीर पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। किश्वर कुमार उन सां गॾु टेलर मास्टर अदा वरी बि ईद अची वई। लाल पवन कुमार ऐं अदा जन सां गॾु आहे नवाब लुंड ऐं चवनि था भाई सलाम क़बूल कजो ऐं मसरूफ़ आहे जुमे के दिन है। जी हा बिल्कुलु अदा, जुमे जो ॾींहुं आहे, नमाज़ जी तयारी करणी हूंदी आहे, खोड़ सारियूं एक्टिविटियूं हूंदियूं आहिनि जेके जुमे जे ॾींहुं माण्हू कंदो आहे। महिरबानी मिठा तव्हां सां प्रोग्राम में शामिल थिया। बांदीअ खां आफ़्ताब जमाली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, अदा आफ़्ताब तव्हांखे भलीकार चवां थो। बांदीअ खां पहिरियों मैसेज मुझे शो में आयो है, बांदी मोरो एतरो परे ना है, पर बांदी का पहिरों मैसेज आयो है, उनके लिए तहां के मैं स्पेशली पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। अदाजन चवन था त असांखे सॉन्ग ॿुधायो ममताज़ लाशारी जे आवाज़ में। हाज़िर मुंहिंजा मिठा, तव्हांखे ममताज़ लाशारी जे आवाज़ में ज़रूरु सॉन्ग ॿुधाईंदासीं।

कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मूं सां वंडींदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मूं सां वंडींदे, हरदम पियो थो राह निहारियां, हरदम पियो थो राह निहारियां, अण तणमी थो फेरियूं पायां, कॾहिं अची तूं आथत ॾींदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, तोखे ॾिसण लाइ साह सिके पियो, तोखे ॾिसण जे लाइ साह सिके पियो, तोखे ॾिसण सां रूह ठरे थो, अखिड़ियूं मिलाए हिकु थी वेंदे, कहिड़ी ख़बर तूं कॾहिं ईंदे, राज़ अंदर जा मूं सां वंडींदे। फैज़ाले जी ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समादो।

0: त मुंहिंजा वेठा ताईं सिंध जो नौजवान नसल जी न इख़लाक़ी तरबियत आख़िर केरु कंदो? कंहिं बि क़ौम जो मुस्तक़बिल उन जे नौजवान नसल सां जुड़ियल हूंदो आहे। जेकॾहिं नौजवान जी न तरबियत सुठे नमूने थिए त उहे समाज तरक़ी अमुन ऐं शौर तरफ़ वधे थो, पर जेकॾहिं नौजवान इख़लाक़ी क़दरुनि खां परे थियनि त समाज में बे रावरी तशद बदनवानी ऐं बेचैनी वधी वञे थी। अॼु जेका सिंध समेत सॼे मुल्क में उहो सवाल अहम बणिजी वियो अथव त आख़िर नौजवान नसल जी इख़लाक़ी तरबियत केरु कंदो? इख़लाक़ी तरबियत जी शुरूआति घर खां ई थींदी अथव। वालदेन पंहिंजे ॿार जी पहिरीं दर्सगाह हूंदा आहिनि। ॿार पंहिंजो जेको बि घर जो माहौल ॾिसंदो आहे न, उहो ई संदसि शख़्सियत जो हिसो बणिजंदो आहे। जेकॾहिं वालदेन पाण सचाई, एहतराम, सब्रु, ईमानदारी इख़्तियार कनि त ॿार बि उहे ई ख़ूबियूं सिखंदो। पर जेकॾहिं घरनि में झेड़ा, कूड़ ऐं बेध्यानी वधी वञे न, त ॿार जी शख़्सियत बि मुतासिर थिए थी। ऐं वरी उन खां पोइ अचे थो किरदारु स्कूल ऐं उस्ताद जो, जेकी नौजवाननि जी तरबियत में अहम किरदारु अदा कनि था। तालीम रुगो किताबनि ते महदूद न हुजणु घुरिजे, पर शागिर्दनि खे इख़लाक़ी बर्दाश्त, इंसानी रवैया ऐं ज़िमेवारीअ जो दर्स मिलणु घुरिजे। पर बदक़िस्मती त असां अॼुकल्ह तालीम जो मक़सदु सिर्फ़ु नौकिरी हासिलु करणु ताईं महदूद बणिजी चुका आहियूं, जॾहिं त किरदारु साज़ीअ खे बिल्कुलु नज़रअंदाज़ करे छॾियो आहे। समाज में जेकी ही असांजा मीडिया जा इदारा आहिनि, उन्हनि जो बि तमामु घणो असरु अथव। सोशल मीडिया नौजवान जी सोच बदिलाए रही आहे। जेकॾहिं मीडिया मुस्बत पैगाम, अमली प्रोग्राम ऐं सुठा मिसाल पेश करे न, त नौजवान जी रहनुमाई थी सघे थी। पर फ़हाशी, नफ़रत ऐं बेमक़सद मवाद नौजवान खे ग़लति राह ते वठी वञे थो। तंहिं करे मीडिया ते बि ज़िमेवारी आहे थिए थी त उहा तामीराती किरदारु अदा करे। उन खां अलावा मज़हबी आलम, अदीब, समाजी अॻवाण, उन्हनि जो बि फ़र्ज़ु आहे त हू नौजवान में इख़लाक़ी शौर पैदा कनि। इस्लाम इंसानियत, एहतराम, सब्र ऐं सचाई जो दर्स ॾिए थो। पर जेकॾहिं नौजवाननि खे दीन जी सही तालीम मिले त हू केतिरनि ई बुराइनि खां बची सघनि था। असांखे रुगो नौजवान पढ़ियल लिखियल न, पर बाइख़लाक, बाशऊर ऐं ज़िमेवार इंसान घुरिजे, छो त मज़बूत क़ौमुनि जी सुञाणप उन्हनि जे किरदार सां ई थींदी आहे, बल्कि दिगर इंसान। मिठा ताईं वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, त हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ज़बरदस्त ज़बरदस्त प्यारा प्यारा तव्हांजे पसंदि जा ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत ट्रैक्स।
1: सचल की

ॿुधायूं पिया गुलछते खां भाउ शायर महबूब पालारी जो ऐं दोहिड़ो भाउ अल्ताफ सो बेले खां फरमा शाह छते खां भाउ नज़ीर खुश्क वहीद अली खुश्क अब्बास अली खुश्क रशीद खुश्क भाउ रिज़वान कश्मीरी भाउ सैफ अली खुश्क हाजी सिराज खुश्क लाला इमरान आलो भाउ रशीद बिरोई जलाल होटलारो बशकली बिरोई ऐं फरमा शाह भाउ हाजी सफ़र पालारी ऐं भाउ मलकनवर पालारी मकली खां भाउ ग़ुलाम पालारी ॿियानवे मोरी खां साहिब खान चांडियो अल्ताफ़ लाशारी जान

ज़ुल्फ़िकार मंगी मोहब्बत का सवाह न दुनिया में बियो रखे हो छा बिल्कुल इन आए ऐं उन खां अलावा रुसण जे हवाले सां तव्हांखे मां ॿुधायां इंसानी रिश्ता जेके आहिनि मोहब्बत एतमाद ऐं बर्दाश्त ते क़ाइमु हूंदा आहिनि जिते प्यार हूंदो आहे न उते कॾहिं कॾहिं नाराज़गियूं बि पैदा थी पवंदियूं आहिनि पर जेकॾहिं रुसण रोज़ जो मामूल न बणिजी वञे त रिश्तनि जी ख़ूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता ख़तमु थियणु लॻंदी आहे रोज़ रोज़ रुसण न रुगो दिलनि में फ़ासिला पैदा करे थो पर इंसान जे ज़हनी सुकून खे बि न तबाह करे छॾे थो कंहिं माण्हू नंढनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते नाराज़ थी वञनि था कॾहिं देर सां जवाब ॾियनि था कॾहिं कंहिं ॻाल्हि खे नज़रअंदाज़ करण या मामूली इख़्तिलाफ़ बि रुसण जो सबबु बणिजी वेंदा अथव ऐं शुरूअ में उहो अमल शायदि मोहबत जी अलामत लॻे पर जॾहिं उहा आदत बणिजी वञे न त पोइ साम्हूं वारो माण्हू थकिजी पवे थो हर वक़्तु कंहिंखे परचाइण ऐं मनाइण सां आसान कमु न आहे हूंदो बहरहाल महबूब त मालिक आहिनि उन्हनि सां हिसाबु छाजो त ज़िंदगी अॻे मसइलनि सां भरियल हूंदी आहे जेकॾहिं हिकु रिश्तो ज़िद शिकायतुनि ऐं नाराज़गी में न फासी वञे त ख़ुशियूं ख़तमु थी वञनि थियूं ऐं रोज़ रोज़ ॾिसण जो हिकु नुक़सानु उहो बि आहे त माण्हू आहिस्ता आहिस्ता अहमियत विञाइणु लॻंदो आहे शुरूअ में माण्हू परचाइण जे लाइ हर कोशिशि कंदो आहे पर जॾहिं नाराज़गियूं वधी वञनि थियूं त पोइ दिलि बेज़ार थी पवे थी ऐं उन करे ई मोहबत खे ज़िद ऐं अनाज बाहि में साहिड़े छॾे थी सॉन्ग आहे ॾाढो ज़बरदस्त अचो त इंजॉय कयूं

सोबत पुर बलोचिस्तान खां नसीर खोसो पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो. महिरबानी अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो. कुर्ब तव्हांजा मुंहिंजा मिठा साईं दादू मोरो पुलका मज़हर अली मला पंहिंजे प्रोग्राम ते अथव. चवे थो अदा गुलाब खान प्रोग्राम सुपर हिट है. थैंक यू जानी, लव यू. ऐं चवे थो प्लीज़ प्ले ज़वार फ़क़ीर उस्ताद बुखारी जी शाइरी. बि ज़वार फ़क़ीर जी आवाज़ में कलाम चए थो, यार ज़वार फ़क़ीर जो आवाज़ ऐं उस्ताद बुखारी जी शाइरी कमाल. त इहो तव्हांजी चूंड आहे, ज़बरदस्त मज़ो अची वियो. अदा टाइम थोरो आहे, पर हाल मां कोशिशि कंदुसि तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो ॿुधो रहियां. ऐं इहो ॾाढो सुठो तव्हांजी सिलेक्शन आहे. ऐं अदा आहे गोहर गोपांग, मोहम्मद अली कोरी उन सां गॾु आहे, निसार अहमद ऐं तुर महमद, जेके ॻोठु आहे वापडा कॉलोनी लाड़काणा खां. चवंदा अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है. थैंक यू जानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम खे पसंदि कयो था, तमामु घणियूं महिरबानी. आज हमारा राहत फ़तेह अली ख़ान खे आवाज़ में नात सुनाओ. जी अदा बिल्कुलु, असांजे पूरे नेटवर्क ते न हिकु वॻे खां पोइ नातूं हलंदियूं आहिनि. ऐं जुमे जे हवाले सां तव्हां हुते ॿुधी करे इंजॉय करे वठिजो. महिरबानी. फ़क़ीर राहिब माशूक मेमुण मिठल मेमुण आसिम मेमुण ब्रिया सिटीअ खां, ब्रिया सिटी जी कोट बहादुर खां चवनि था, या अली मदद मौला अली मदद मुंहिंजा अदा. महिरबानी अदा फ़क़ीर राहिब, तव्हां असांजे सभिनी प्रोग्रामनि में शामिलु थींदा आहियो, मुंहिंजे बि प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहियो. उनजे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा, लख अहसान, इहे तव्हांजूं मुहबतूं आहिनि. ॻोठु शादी खान जिस्कानी लॻ मीरपुर, ख़ासि खां गुलाब अली जिस्कानी. अदा नाले भाई अलाए किॾे गुम थी वियो आहे, ॿ टे ॾींहं मां सम्झा पियो, मुंहिंजो अलाए किॾे हले वियो, शायदि कोन थो प्रोग्राम ॿुधे. बरहाल अदा तव्हां वापसि आया आहियो, चयो थो अस्सलाम वालेकुम. त वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम ॿुधूं पिया. महिरबानी मिठा था प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं तमामु भलो आहे. हा साईं बिल्कुलु, तव्हांजी पसंदि जो प्रोग्राम आहे न मुंहिंजा मिठा साईं. फ़ाइदा फौज़िया सूमर जी आवाज़ जी अदा जन फरमाइश कई आहे. सलाम सलाम चवनि पिया नज़ीर खोसो, जेको बलोचिस्तान खां आहे, उनखे महिरबानी अदा, तव्हांजी तव्हां प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो. गुरबा मिठा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो.

मुझे सुनो नवाबन जो नवाब भाई ये बोल हन गाने जा बाबा त प्रोग्राम जो वक्त पहुंची आए पाजी पुजाणी ते वणन का मेरे हमेशा हम ताके चंदासी पाजो घणे खा घणो ख्याल रखना कयो पाजे दोस्तन जो पाजे मिटर मेटर जो पाजे पाड़े वारन जो तमाम घणो ख्याल रखना कयो छो जो जिंदगी मुक्तसर है खबर ना है जिंदगी केतरी है। शमन अली मिराली जो विदे सॉन्ग प्ले कया तो डाटो भलो सॉन्ग अथव उम्मीद तो सभी के पसंद इंदो इंशाल्लाह ताला मुझे तरफ का एडवांस ईद जो मुबारकू अवां के हुजन छो जो असान जो जो वरी प्रोग्राम नेक्स्ट थी वो ईद का बाद में थी त ईद के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह गड हूँ असि नेटवर्क की हमेशा कोशिश रही है तो ईद जो खुशियों दुबाला थियन तवाज ही असो साथ रहे इंतजार कजो ईद के प्रोग्राम में पा गड हूँ नेक्स्ट फ्राइडे अगर हयाती रही तो वो सागे ही टाइम से तक हूँ तेस तीन जैसे डींदा पाजे मेज़बान गुलाब खान भेण के इजाजत त अलह वाही अलह निगहबान शमन अली मीराले जो खूबसूरत सॉन्ग सजन लख कुर्ब करे आए तू फिरी पेर में।

सिंध पुलिस सूबे में अमन कायम करण में नाकाम तकरार ते भी बुंझंदा आयो मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत सत ॼणा क़त्ल हिकु ॼणे जो तशद्दुद थियल लाश ते बख्शाबुफ़ सां भंगवार बरादरी जी बुंझड़ में झेड़ो थियो औरत समेत टे ॼणा क़त्ल ॻोठ सफ़वान जाफ़री में थियल झेड़े में मेहार भंगवार ग़ुलाम फरीद ऐं औरत आलिम उमाद जी वई पलांद में हिकु औरत समेत टिनि ॼणनि खे क़त्ल कयो वियो कश्मोर भरिसां भई कचे में कोश ऐं शरदुनि में झेड़ो थियो बदनाम धारियल भूरो शहर ऐं नूर मोहम्मद कोश समेत टे ॼणा मारिजी विया ॿिन्ही धारियलनि जी सिर ते 50 लख रुपया इनाम बि रखियल हो मारिजी वियलनि में मारूफ़ शहर बि शामिल गंबर भरिसां बि पर सईद भट्टीअ खे ॾंडा हणी क़त्ल कयो वियो न्यू सैदाबाद भरिसां नौजवान अब्दुल लतीफ़ जमाली जो घर मां तशद थियल लाश ठाहियो पुलिस टिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो पुलिस मुंहिंजे वाके में मुलविज़ उमीद अली रांझण ऐं अलीगुल जमाली खे गिरफ़्तार कयो आहे

पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में जारी छिकतान के खात्मे के लिए कोशिशों तेज कर छी। घर वजीर मोहसिन नकवी 24 कलाक दौरान ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी से तेहरान में भी मुलाकात। तेहरान ए वाशिंगटन में इम्कानी वायदे वाली तजवीजों से गाल ईरानी न्यूज एजेंसी फारस मूजिब बिन्हीं अगवान अमेरिकी ईरानी तजवीजों से तफसीली गालबोल कई है। जरिए मूजिब पाकिस्तान जो अहम वफद अज तेहरान वही सके तो ईरान पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका से गाल जारी रहने की तस्दीक कर छी। अमेरिकी तजवीजों से तेहरान नव जवाब वॉशिंगटन के मोकले छो। वायदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशों तेज। ईरानी खबर इदारे मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में पाकिस्तान जरिए गाल जारी हैं। बई धुरू वायदे के हतमी शिकिल देने के लिए एक बे के पाकिस्तान जरिए पैगाम पहुंचा रही हैं। ईरानी अमलदार मूजिब अमेरिका से अजा तय वायदो तय ना थो। इख्तिलाफन में घटताई जरूर थी है।

ईरान टोल लगाया तो तेहरान ए वाशिंगटन में सफारती मुआदो नो दुनिया में केर भी आबदा आर्मुज से टोल के हक में ना है इनके कबूले नो सकते अमेरिकी परदेही वजीर मार्को रोबियो है तेहरान से गाल में कुछ मसबत इशारा मिलिया पुरुमीद ना इंदड़ कुछ डी में शूं वाजे थी व्यू

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चीन के अहम दौरे से सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो। परदेही तर्जुमान पारा तस्दीक ताहिर हुसैन इंद्राबी चयो आहे त वज़ीर-ए-आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूद हूंदो। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सुना साईं, कुछ खबर अथव?
4: छा थियो आ सोणी?
3: बिन ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे। नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
4: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
3: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
4: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाने अमाजे पेंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84-700।
2: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो, बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। डींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वगे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मी खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे, पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
3: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल अखाड़ा 10 जनवरी से बुध रात 8 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा vitamins और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals स्किन में fully absorb हो जाए, स्किन को fair और fresh बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, glowing skin का राज। A product of Biocon International Pakistan.
2: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अव्हांजे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
0: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जाने जहां देखिए 22 दिसंबर से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: बात जल्द आ रहा है।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हैदराबाद का वधिक असद जलाल मलारी अब्दुल गफार गायचो ई फरमाश अब्दुल शकूर गायचो हैदर अली गायचो मोहम्मद उमर गायचो अदा अली मुराद गायचो पुट है वधिक फरमाश जमील गायचो उसानगर पेंदी आरा आज कृषि दोस्त के छा पे थे

0: इट्स 2 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क
3: जे लाइ कोशिशूं तेज करे छॾियूं घर वज़ीर मोहसिन नकवी ॾींहुं 24 कलाकनि दौरान ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकी सां तहरान में ॿी मुलाक़ात तहरान ऐं वॉशिंगटन में इम्कानी माहिदे वारनि तजवीज़ुनि ते ॻाल्हियूं ईरानी न्यूज़ एजेंसी फारस मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि अमेरिकी ऐं ईरानी तजवीज़ुनि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई आहे दरियनि मूजिबि पाकिस्तान जो अहम वफ़द अॼु तहरान वञी सघे थो ईरान पाकिस्तान जी सासीअ में अमेरिका सां ॻाल्हियूं जारी रहण जी तस्दीक करे छॾी अमेरिकी तजवीज़ुनि ते तहरान नओं जवाब वॉशिंगटन खे मोकिले छॾियो मुआदे जे लाइ रस्मी फ्रेमवर्क तयार करण जूं कोशिशूं तेज़ ईरानी ख़बरदारे मूजिबि तहरान ऐं वॉशिंगटन में पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि ॿई धुरियूं मुआदे खे हथ में शिकिल ॾियण जे लाइ हिक ॿिए खे पाकिस्तान ज़रिए पैगाम पहुचाए रहियूं आहिनि ईरानी अमलदार मूजिबि अमेरिका सां अञा ताईं मुआदो तय नाहे थियो इख़्तिलाफ़नि में घटिताई ज़रूरु थी आहे हरमोस से ईरान तो लगाया तो तहरान ए वॉशिंगटन में सफारती वायदो न थींदो दुनिया में केर भी आबदा हरमोस से टोल जे हक में ना है इनके कबूले न थो सके अमेरिकी परदेही वजीर मार्को रूबियो चयो है तहरान सा गालिन में कुछ मस्बत इशारा मिला आहिन वधिक पुर उम्मीद ना है इंदर कुछ दिन में शयूं वाज़े थी वेंदियूं अमेरिकी कांग्रेस में ईरान जंग बाबा सदर ट्रंप जा इख़्तियार महदूद करण वारे ठहराउ ते वोटिंग मुलतवी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी जी क़यादत जे चवण ते वोटिंग मुलतवी कई वई अमेरिकी मीडिया मूजिबि ठहराउ ते डेमोक्रेट्स जा वोट्स मुकमल हुआ जंहिं सबबि रिपब्लिकन पार्टी वोटिंग मुलतवी कराई वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे अहम दौरे ते सुभाणे बीजिंग रवानो थींदो पर हीउ तर्जुमान पारां तस्दीक ताहिर हुसैन इंदिरावी चयो आहे त वज़ीर आज़म सुभाणे खां 26 मई ताईं चीन में मौजूदु हूंदो सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म ली चियांग ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो पाकिस्तान जूं विचोभर में छिकताण जे ख़ात्मे जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि घर वज़ीर मोहसिन नक़वी तहरान जा ॿ अहम दौरा कया आहिनि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मामले ते आलमी अॻवाननि सां राब्ते में आहिनि

कराची में शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब शाम रोड जो बाजाबता इफ्तिताह कंदो। वरी वजीर मुराद अली शाह चयो है शाहराह भुट्टो शहीद बेनदी जो मनसूबो हो जैसे सिंध हुकूमत मुकम्मल कयो। शाहराह भुट्टो कराची की मुआशी तरक्की जदीद ट्रांसपोर्ट ए शहरी सहूलतुन की नई सुणप बणबो। कराची सिंध की जान ए पाकिस्तान की दिल है। शहर की तरक्की असि तरजीह है। 45 किलोमीटर जो रस्तो 40 अरब रुपये की लागत से मुकम्मल किया वो। सिंध पुलिस सूबे में अमन कायम करण में नाकाम। तकरारन ते भी गुंजो न आयो। मुख्तलिफ शहरन में औरत समेत 7 जणा कतल। 1 जणे जो तशद थियल लाश थे। बख्शापुर भरसा भंगवार बिरादरी की बिंदुन में छेड़ो। औरत समेत 3 जणा कतल। गोठ सखवान जाफरी में थियल छेड़े में मेहार भंगवार गुलाम फरीद औरत आलिम उमर जी वही। पलांद में 1 औरत समेत 3 जणन के कतल किया वो। कश्मोर भरसा में कचे में कोश ए शरसुर में छेड़ो। बदनाम धाड़िल भूरो शहर ए नूर मोहम्मद कोश समेत 3 जणा मारजी वया। बिन्ही धाड़िलन के सिर से 50 लख रुपये इनाम भी रखल हो। मारजी वालन में मारूफ शहर भी शामिल। गबर भरसा में पर सईद भट्टी डंडा हणी कतल। न्यू सईदाबाद भरसा नौजवान अब्दुल लतीफ जमाली जो घर में तशद थियल लाश थे। पुलिस 3 जणन के गिरफ्तार कर वरतो। पुलिस मुझे वाक़े में मुलविज उमीद अली रांझण ए अलीगुल जमाली के गिरफ्तार किया है।

0: सिंध के मुख्तलिफ शहर में सियासी ए मजहबी जमातन जहां महंगाई खिलाफ मुजाहरा जी वाई पारा महंगाई ए बदमनी खिलाफ सखर कंबर लाड़कानो हैदराबाद नवाबशाह मीरपुर माथेलो सांगड़ में एहतजाज जमात इस्लाम के सिले से कोठड़ी कंधकोट तलहार ए जैकबाबाद में मुजाहरा नौशहरो फिरोज उमरकोट ए सेमण में एस यू पी एहतजाज किया हैदराबाद ए मटियारी में कौमी अवामी तहरीक पारा महंगाई खिलाफ एहतजाज किया वो महंगाई से जब्तो आनने का मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीके इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हां, हाने अमाजे पैंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ए जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी आई सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबनन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे खां शाम 6 बजे ताई परोज जुम्मो 12 बजे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधिक मशवरे ए रबते जे लाए 0327-99-84-763।
4: कमी गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो। घणो पानी वापरायण जी आदत ठायो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO आई स्टार नेटवर्क जे तावुन सा आवाम जे आगाही लाए पेश कयो वयो।
5: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
6: सुनते रहो GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायद सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: भारती वायदो न थींदो. दुनिया में केर बि आबिदा हरमुस ते टोल जे हक में न आहे. इन खे क़बूले नथो सघे. अमेरिकी परे वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तेहरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु मस्बत इशारा मिलिया आहिनि. वधीक पुरउमीद न आहियां. ईंदड़ कुझु ॾींहनि में शयूं वाज़े थी वेंदियूं.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो, बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे, पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
7: ॾाढो सुठो
6: GFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके।

0: तो दोस्तों, आपको ये हमारा OST सॉन्ग कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ये सॉन्ग कैसा लगा। तो आखिर में हम आपको इस ड्रामे की एक छोटी सी शॉर्ट कहानी बता देते हैं कि इस ड्रामे में तीन अहम किरदार हैं, शफक, शहान और उल्फत। शफक जिसका किरदार इस ड्रामे में एक अमीर लड़की का दिखाया गया है, उसके बाद उल्फत का किरदार एक नॉर्मल लड़की का दिखाया गया है लेकिन जिसको दौलत से बेहद प्यार है और वो दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है। इसीलिए दोस्तों, उसने इस ड्रामा सीरियल में अपने शोहर शहान का तकरीबन 10 करोड़ रुपए में सौदा कर दिया। हालांकि वो शोहर जो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसके आगे ये मोहब्बत, ये प्यार कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे की और दौलत का भूत उसके सर पे सवार है। तो शफक जो कि बे इंतहा मोहब्बत करती है शहान से, तो वो तो पैसे दे के अपनी मोहब्बत हासिल कर देती है, लेकिन शहान उल्फत की तरफ मायल रहता है। लेकिन जब उल्फत ये पैसे लेके ये मोहब्बत का सौदा करके ये शादी करवा देती है, तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे शहान के दिल में शफक के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और यूं वो हंसी बसी जिंदगी गुजारते रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए उल्फत की, तो वो दिन ब दिन अमीर तो होती जा रही है, लेकिन वो दिन ब दिन डिप्रेशन में भी जाती रहती है। यहाँ तक के वो अपने बेटे को भी बिला वजह मारती, उस पे चीखती चिल्लाती रहती है। और आस्ता आस्ता यहाँ तक कि वो तकरीबन नीम पागल हो जाती है। और इनकी ज़िंदगी में, शहान और शफक की ज़िंदगी में दोबारा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी होती है शफक की और शहान की, और उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही होती है। और लास्ट में उल्फत जो है वो इस ड्रामे में, इसका जो एंड है इस ड्रामे का, उसमें वो फौत हो जाती है। तो ये था दोस्तों इस ड्रामे का एंड। और इससे सबक तो यही मिलता है कि दौलत को किसी के प्यार मोहब्बत से आप नहीं तोल सकते। जो एक मुखलिस प्यार और मोहब्बत है, वो एक दौलत के साथ कभी भी नहीं तोला जा सकता, क्योंकि सच्चा प्यार दौलत का तलबगार नहीं होता। और दोस्तों, सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार, इन दोनों चीज़ों को दौलत से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं होता। ये एक आजाद पंछी की तरह होती है जो अपने ख्वाबों में ही।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गरमाइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सां हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक़्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
5: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
6: सुनते रहो GFM 90.8।

0: अच्छा लगता है. आई लव यू ऑल. और आप मुझे कॉल कर सकते हैं जनाब 03000113488 पर. आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं. मैं देखता हूँ जनाब हमारे फेसबुक पेजेस पे भी बड़े मैसेजेस आ रहे हैं. नजीर खोसो हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, वो यहाँ पे भी मैसेज करें, यहाँ पे भी मैसेज करें. नजीर खोसो साहब बड़े तेज हो आप. और जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे लाइव फीड पे आ रहे हैं. इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और स्टार्स विस्टार्स दें जनाब, स्टार विस्टार्स दें. और जनाब अब हम प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा गाना. इस वक्त मेरे पास लग गया है वो वाला ईद वाला जो कह रहे थे वो प्यारे से भाई के ईद
1: भी करेंगे. और
0: हाँ ईद भी क्या कि न क्या. तो ये ईद भले तो क्यों आई, इन्हें गाने के भी इंजॉय क्यों और हमारे साथ भी रहें आप, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं. जनाब हम प्ले कर चुके हैं प्यारा सा गाना. तो ये गाने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही. हाँ जनाब इस गाने को सुनिए और सुनते रहिए जनाब. आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी. वजहत अली है कहते हैं पनवाकिल वाले आपको याद कर रहे हैं. अशफाक भाई थैंक यू सो मच यार, मैं भी पनवाकिल वालों को याद कर रहा हूँ. चक्कर लगाएं सर, खिदमत का मौका दें. अशफाक भाई बिल्कुल जनाब इंशाल्लाह जरूर आएंगे. जायद अली कहते हैं और अशफाक भाई क्या हाल है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप गाना सुने इसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के बाद में वापस आता हूँ. थैंक यू सो मच.

0: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM 88 की आवाज,
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक।

0: रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: क्या देख रहे हो
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करयो जी हां हाने अवाजे पंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी आई सोज पुरानी खंग जुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विदो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे खां शाम 6 बजे ताई बरोज जुमो 12 बजे ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327 99 84 763
5: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
6: GFM 90.8

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by.
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
2: मोरो नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: खुशखबरी बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वया

0: सही ॻाल्हि आहे. माण्हू पाण खे पाले या ढोल ढगनि खे पाले? सही ॻाल्हि आहे. अलाह रहम कंदो, अलाह रहम कंदो. इहो ॿुधायो, ईद जा कोई वॻा, कोई जूता, कोई सैंडल? हा सची चओ.
1: कुझु बि कोन वरितो
0: आहे. हा मूं वांगुरु
1: ईद सादगी सां कंदासीं.
0: ईद सादगी सां कंदासीं, बिल्कुलु जनाब. पर कंदासीं
1: सादगी सां, पर
0: धमाके सां कंदासीं. बिल्कुलु बिल्कुलु. अच्छा रफ़ीक, इहो ॿुधायो, सरमत जो गानो थो हलायां, विछोड़ो मारे थो, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
1: यार सरमत मुंहिंजे दोस्त अब्दुल्ला खे पसंदि आहे, पर हुन मुंहिंजी फरमाइश न हलाई.
0: वरी कहिड़ी? वरी कहिड़ी? वरी कहिड़ी?
1: हुन समन जी फरमाइश कई हुई.
0: कहिड़ी बाबा?
1: मुंहिंजे यार जी पारत थी.
0: अच्छा, मुझे यार जी पारत थी. अच्छा गाय ॿुधायो तव्हां मूंखे ज़रा.
1: ॾुख
0: लॻो
1: अथसि.
0: चलो कोई ॻाल्हि आहे, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो शर्मा जो गानो? वरी मां तव्हांखे समन बि ॿुधाईंदुमि इनशाला.
1: वरी
0: ॿुधायो कहिड़ो, जेको बि ॿुधायो.
1: यार अथई कुझु इन तरफ़ मूंखे सोचे सूरत जाए, मां दिलि जो मरीज़ आहियां.
0: इहो वरी कहिड़ो गानो आहे? इहो ॻाल्हाए थो या गानो आहे? इहो
1: हिकिड़ो

0: हा थैंक यू सो मच यार. बस असां तव्हां लाइ झोलियूं खणूं खणी दुआ था कयूं. बसि हा बस मां हाणे गानो थो हलायां.
1: हलो बस पंहिंजो ख़्यालु रखिजो.
0: ओके ओके ओके थैंक यू. थैंक यू. हमारे साथ है जनाब रफीक जतवई और उससे पहले कुर्बान खास कली भाई थे. तो अब ये गाना चलाते हैं कुर्बान खास कली की फरमाइश पे. इस गाने को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा.

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: छो त आदि अची वई हिकिड़ी लुबना ऐं हुन असांखे ज़ोर भरियो त न मां मूंखे इहो गानो ॿुधायो त इन लाइ हुन जो गानो प्ले
1: थैंक यू
0: अलाह हाफ़िज़। हमारे साथ जनाब रहीम भाई और इनकी फरमाइश पूरी नहीं हुई थी तो ये दोबारा से आए हैं पर हम इनकी फरमाइश अब ज़रूर पूरी करेंगे। तो अख बदली तो जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। अस्सलाम वालेकुम। केर था असां सभिनी सां गॾु मोहम्मद मुबीन जखरानी कंदकोट खां। कहिड़ा हाल चाल आहिनि मोहम्मद मुबीन जखरानी साहब? सफ़ा
2: अलहमदुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। इहो ॿुधायो छा कंदा आहियो तव्हां? अच्छा वांदा छो वेठा आहियो? कोई कम कार माना कोई पढ़ाई छड़ाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ॿियो कुझु बि न कजो छो त पढ़ाई ज़रूरी हूंदी आहे, पहिरीं पढ़ाई हुन खां बाद ॿियो कुझु। अच्छा इहो जी जी कहिड़ो कहिड़ो कहिड़ो ॾिसो मूंखे थोरो ईंदो आहे, तव्हां बि मूंखे गाए ॿुधायो ज़रा। तमामु घणो फेवरेट गानो आहे, ख़बर अथव? हा इहो मां गानो प्ले कयां थो पर इन द एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके प्रोग्राम जे एंड में जी गानो त मिली वियो आहे मूंखे पर हाणे इहो ॿी ॿिए अधे जी फरमाइश आहे न उहा प्ले कंदासीं पहिरीं उहो तव्हांजी फरमाइश ठीकु आहे। कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? ओके ओके ओके ओके ओके ठीकु आहे। थैंक यू सो मच। थैंक्यू जी जनाब। हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉल है जखरानी भाई और जखरानी भाई की फरमाइश पे ये गाना जरूर सुनवाऊंगा। हम लोग जानी और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जानी केर असां सभिनी सां गॾु।
3: पर मां गुलाम शबीर जतो ॻाल्हायां पियो मोमिन खान जतो चके खां।
0: शबीर भाउ कहिड़ा हाल चाल अथव? अलहमदुल्ला। ऐं चक चका चक चक सफ़ा कीअं लॻो पियो आहे?
3: जी सर
0: चक सफ़ा ठीकु लॻो पियो आहे।
3: अलाह जाए छा ख़ुशो
0: ज़बरदस्त। छा कंदा आहियो शबीर
3: भाउ?
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। कीअं हले थो तव्हांजो हारपो? माशाल्लाह माशाल्लाह। अलाह तव्हांजे कारोबार में अलाह तव्हांजे कम में बरकत ॾे। इहो ॿुधायो गानो थो हलायां कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
3: सर मुंहिंजो भाउ आहे मोहम्मद जतोई।
0: जी जी
3: वाल साहब मोहम्मद जतोई। मुंहिंजो दादो आहे जमाल खान जतोई।
0: जी जी
3: जतोई जी बिरादरी सर हमारा।
0: ठीक है ठीक है दादा। थैंक यू बशीर भाई। पंजो खास ख्याल रखो। थैंक यू। हमारे साथ है जना बशीर भाई और बशीर भाई की फरमाइश पर हम गाना चला रहे हैं। ओ सॉरी बशीर भाई की नहीं बल्कि रहीम भाई की फरमाइश पर गाना

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
0: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फार्म धमाका
2: अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह, वल्द हज़रत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
1: की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेहरान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: नजीदा कौन की जा?
2: नजीर।
1: नजीदा नजीदा।
2: नजीदा।
1: नजीदा हाँ।
2: नवीद नवीद। अच्छा नवीदा अच्छा हाला तांजो ठीक ठाक।
1: हाँ गले हमारे चला।
2: फर्स्ट क्लास अच्छा किंदा है नवीदा।
1: माँ कंदिया सिलाई।
2: अच्छा तो सिलाई कंदा कंदी आयो।
1: अच्छा
2: ओके ओके ओके तो हाँ ये जो सीजन आता तो वहाँ जी सिलाई सुटिया लंदी होती।
1: जी जी।
2: अच्छा गुड तां के सामने शो किया लेकिन तो आ।
1: मुझे
2: खबर आ पर मैं चव समझ में न पी अचे आयो आखिर कड़ी जिन्स आयो मुख्य भी लगे पे नवीद नवीदा की थी भैया भला एडो तरक्की जमानो हाँ सही सही सही कड़ो गानो बुझन चाहो दादा अच्छा ओके कैसे नारा था करना चाहो मुस्कुरांदा रहो जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया शो में वो तो शो की हाँ नेक्स्ट कॉल चाहूँ था कॉलर के अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम
2: सलाम सबनी सा गड़ो सोना खान मस्तोई कैसे हाल चाल है आपके ठीक है
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आपकी टीम कैसी है
2: फर्स्ट क्लास मजे में आप सुनाए क्या हो रहा है और गाना चला रहा हूँ हमारे लोग जानी ये किसका नाम करना चाहेंगे
3: हाँ बस नाम जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं सबसे पहले अली फन का नाम करूंगा उसके बाद में क्या है और उसके बाद अब्दुल्ला बंगवा रहे घोड़ा खान बंगवा रहे और आपकी पूरी टीम है और आपको ईद मुबारक और आप बताएं आप ईद वाले दिन कौन से टाइम और किस टाइम आप प्रोग्राम करेंगे अभी तो तुम्हारी मुलाकात ईद से होगी हमारे साथ
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात होगी लेकिन अभी शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा हमारे ऑफिशियल पेज पर भी और प्रोग्राम्स में भी बता दिया जाएगा कि हम कब कब आ रहे हैं आपके साथ
3: इसीलिए हमने कहा आज आपके प्रोग्राम में बात करें आपसे बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको
2: जी जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे बात करके
3: जी जी बिल्कुल
2: थैंक यू सोना भाई
3: ठीक है सर बहुत सारा सलाम आपकी टीम को सर
2: वालेकुम जी जनाब अब हम शो को करते हैं यहीं पर वाइंड अप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और गाना चलाते हैं हम लोग जानी इस गाने को सुनिएगा और रशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी और ईद पर तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमेशा मुस्कुराते रहिए टेक केयर गुड बाय हैव अ नाइस डे लव यू ऑल एंड अल्लाह ने गुड बाय

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: الحمد.
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जो जवाब जो कुझ ॾींहं ताईं इंतज़ार कंदासीं। ईरान वटि वक़्तु घटि आहे, जेसिताईं को वाइदो नथो थिए ईरान खे को बि रिलीफ न ॾींदासीं न ईरान खे एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त ॾींदासीं। असांखे ईरान खां सही जवाबु हासिलु करिणो आहे, हुन लाइ कुझु ॾींहं इंतज़ारु करे सघूं था। हाणे जिन ईरानियुनि सां ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि उहे ज़हीन माण्हू आहिनि। अमेरिका ऐं ईरान विच में जंग जे ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। अरब मीडिया मूजिबि मुसवदे खे हतमी शिकिल ॾियण लाइ पाकिस्तान जी अहम शख़्सियत अॼु तेहरान पहुची ईरानी क़ैद सां मुलाक़ात कंदी। ईद उल अज़हा बाद इस्लामाबाद में ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर दौरान जंगबंदी मुआदे ते सहियूं थियण जो इम्कान आहे। पाकिस्तानी अहम शख़्सियत जे अॼु वारे दौरे बाद ईरान ऐं अमरीका विच में हतमी मुआदे जे मुसवदे जो ऐलान थी सघे थो। अमन मुआदे लाइ अमरीका सां अण सिधियूं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ख़तम न आहे कयो। ईरान अमरीका सां जंगबंदी मुआदे लाइ ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो बंदि करण जी तरदीद करे छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तान जी टेकड़ी सां अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरान मथां लागू पाबंदी फौरी तौर ख़तम कई वञनि। असां बुनियादी तौर ते जेको चाहियूं था उहे असांजा मुतालबा न पर असांजा हक़ आहिनि। दुश्मन जी चालाकियुनि मां ज़ाहिर थिए थो त उहे जंग जे नए दौर जी ॻोल्हा में आहिनि। वधंदड़ मुआशी दबाउ ऐं घेराउ ईरान खे हथियार फिटाकण ते मजबूर नथो करे सघे। सदर ट्रंप जी धमकियुनि ते ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ जो रद अमल। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची चयो आहे त जंग में वापसी जी सूरत में अमरीका खे घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे हुन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज रद अमल ॾींदासीं। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी जो चवणु आहे त अमरीका धमकी खे अमुन जो मौक़ो बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं वीचारे जो मुक़ाबिलो करण लाइ तयार आहियूं।
1: ईरान ऐं अमरीका जी वेढ़ खे रोकणु ज़रूरी आहे। हिकु तरफ़ी गुंडागर्दी ऐं तारीख़ खे तब्दील करण वारनि क़दमनि जी मुख़ालफ़त करणी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन विच में मुलाक़ात दौरान इतफ़ाक़। बेजिंग में रूसी सदर सां मुलाक़ात दौरान चीनी सदर ॻाल्हाईंदे चयो त विच ओभर जी सूरतयाल अहम मोड़ ते आहे। छिकताण जी ॿीहर शुरूआति कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। मौजूदा हालतुनि में ॻाल्हियूं वॾी अहमियत रखनि था। पुटिन चयो त आलमी सतह ते इस्तेकाम बरक़रार रखण लाइ चीन ऐं रूस जो किरदारु अहम आहे। चीनी ऐं रूसी सदरनि विच में मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जे गॾियल पधराई ते सहियूं बि कयूं वयूं।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां चीन जे आला सतह वफ़द जी मुलाक़ात। चीनी वफ़द जे नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी जे नायब चेयरमैन जी अॻुवाणी में वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं चीन विच में तारीख़ी ऐं स्ट्रेटजिक सहकार ते ॿधल भाईवारी खे सराहींदे चयो त पाकिस्तान ऐं चीन विच में स्ट्रेटजिक अमाइगी जे बुनियाद ते दोस्ती जो बेमिसाल रिश्तो क़ाइमु आहे। वज़ीर आज़म सां बरतानिया जे क़ौमी सलामती वारे सलाहकार जोनाथन पावल जी बि मुलाक़ात। मज़बूत मुस्बत मुस्तक़बिल ते ॿधल लाॻापन खे वधीक अॻिते वठाइण वारे आज़म वरचायो। बरतानवी सलाहकार जोनाथन पावल जी मुलाक़ाई सफ़रतकारी में पाकिस्तान जी तामीरी किरदार जी वाखा।

0: अस्सलाम वालेकुम जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जलाव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सान साण करे हाजिर खिदमत मां वाजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी मुंहिंजो आवाज़ हवाउनि जे लहरनि वसीले जिते जिते पहुचे पियो ॻोठनि वाहन वस्तियुनि या कोई ड्राइविंग दौरान या कोई कमकार दौरान असांखे ॿुधी रहियो आहे असांखे कनाए रहियो आहे उन्हनि सभिनी सजणनि खे मूं तरफ़ां सिक ई मोहबत भरियो सलाम क़बूल पवे सामिन अवां जा कहिड़ा हाल आहिनि उमेदु आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा असांजो खोड़ सारी दुआऊं अवां जे लाइ जिते हुजो शादाबाद हुजो सदाई खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो आमीन या रब्बल आलमीन सकरन हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जी असमीन सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक जेका डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम हूंदो हो क्लिनिक जे नाले सां सकरन होम्योपैथिक जी हाणे उहा हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां क्लिनिक आहे जेका स्टेशन रोड ते मूव थी चुकी आहे जी असमीन सुभाणे छंछर वारे ॾींहुं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड ते अव्हांखे डॉक्टर साहब मौजूदु मिलंदा ऐं शेरवाणी क्रिया वारी क्लिनिक बंदि थी चुकी आहे उतां डॉक्टर साहब हलिया विया आहिनि यानी हाणे डॉक्टर साहब जी पंहिंजी पुराणी जेका ॾाॾे वारी क्लिनिक आहे उहा मौजूदु आहे ऐं डॉक्टर साहब उते ई पंहिंजो सेटअप करे छॾियो आहे हाणे अव्हांजो इलाजु उन साॻे ई पुराणे तरीक़ेकार सां उन साॻी क्लिनिक ते ई इलाजु कयो वेंदो समिन डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां डॉक्टर साहबु माहिर अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निचू जोड़नि जो सूरु मथे जो सूरु मादे जी अल्सर मादे जी जलन तिली जो वधणु जिगर जा मर्ज़ शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघु टीबी हेपाटाइटस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बि बग़ैर ऑपरेशन जे इलाजु कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंगु सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधणु मर्दनि तुणे औरतनि में वज़न जो न वधणु अहिड़नि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो डॉक्टर साहबु रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां हाणे शाम 6 वॻे ताईं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण में मरीज़नि जो इलाजु कंदा जी असमीन नवाब शाह मोड़ आहे नवाब शाह मोड़ खां थोरो अॻिते वेंदो उते तव्हांखे हाजी बेकरी ईंदी उन खां थोरो ई अॻियां डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे समिन चौंक ते ई डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे ऐं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक पुराणी मशहूरु आहे कहिड़े बि रक्षे वारे खे कंहिंखां बि तव्हां पुछा कंदो त हाजी इनायत क्लिनिक किथे आहे त हर कोई तव्हांखे ॿुधाईंदो वधीक डॉक्टर साहब जो नंबर मां तव्हांखे नोट करायां थो इहो नंबर डॉक्टर साहब वटि मौजूदु हूंदो आहे तव्हां इन ते कॉल करे राब्तो करे सघो था नंबर नोट कंदा 0327-9984-7063 2-7-8-9-8-4-7-6-3 जी असमीन इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे ऐं मां तव्हांखे वरी ॿुधाईंदो हलां डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाणे हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां आहे स्टेशन रोड सकरण ते नवाब शाह मोड़ खां थोरो अॻियां स्टेशन रोड जी तरफ़ वेंदा त डॉक्टर साहब उते तव्हांखे क्लिनिक ते मौजूदु मिलंदा ॿाहिरां मेडिकल स्टोर आहे ऐं अंदरि डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे जी असमीन ताज़ो डॉक्टर साहब क्लिनिक शिफ्ट कई आहे जंहिंजे करे उते ॿाहिरि बोर्ड न हूंदो लेकिन डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जे भरिसां थंबो ज़रूरु लॻियल आहे उनखां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में डॉक्टर साहब जी क्लिनिक खां पोइ जेको आहे सर उते जेको आहे गाह जी पीढ़ी आहे न वॾी हिकिड़ी गाह जी पीढ़ी उते आहे ऐं ॿ स्टोर गॾो गॾु आहिनि उते डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे समिन तव्हांखे ॾुखियाई त कान थींदी जेके असांजा परे खां असांजा भाइर असांजूं भेनरूं असांजा बुज़ुर्ग अचनि था उहे डॉक्टर साहब ॾे कॉल करे ऐं पुछी सघनि था डॉक्टर साहब तरफ़ हलूं था ऐं उन्हनि खां मालूमात वठूं था अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब
1: वालेकुम अस्सलाम
0: डॉक्टर साहब कहिड़ा आहिनि नवाजा
1: अलहमदुल्ला
0: डॉक्टर साहब पहिरीं त मुबारकबाद ॾियूं था मां क्लिनिक पंहिंजी शिफ्ट कई आहे पंहिंजे ॾाॾे वरी पुराणी क्लिनिक ते ऐं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे हवाले सां अॼु अव्हांजो टॉपिक छा हूंदो असांजे सामान जे लाइ सर
1: बिल्कुलु सामान जे लाइ टॉपिक हूंदो पर सभिनी खे इहो ई ॿुधाईंदासीं त जेका असांजी पुराणी अस्पताल हुई पुराणी क्लिनिक हुई ॾाॾे जे टाइम सां उन क्लिनिक साॻी जॻह ते हली वियासीं उनजी मेन वजह इहा हुई त कुझु जेका पेशंट्स आया हुआ असांजा इन महीने पोएं महीने उन्हनि जी शिकायतूं असां वटि जाम हुयूं त साईं इहो रस्तो असांखे उबदो थो पए ऐं अचण वञण में ॾुखाई थिए पई, तव्हां शहर वारे पासे अचो। त इन करे असां अचो सोचियोसीं त साॻी जॻह ते वञूं त जंहिंसां हम पेशंट अचनि पिया या जेका बि असांखे ॿुधनि पिया उहे अचनि पिया त उन्हनि खे असां आसानी सां मिली सघूं। छो त स्टेशन रोड ते तमामु घणा डॉक्टर्स वेठा आहिनि, स्टोर्स वारा वेठा आहिनि, त उन्हनि में असांखे ॻोल्हण तव्हांजे लाइ थोरो ॾुखियो ज़रूरु थी सघे थो। छो त हींअर असां हींअर शिफ्ट कयूं पिया, उतां खां सॼो सामान खणी शिफ्ट थिए पियो त उनजे करे अञा पेनाफ्लेक्स वग़ैरह बोर्ड वग़ैरह बि कोन लॻनि त अञा तव्हांखे ॾुखाई थी सघे थी। त उनजे लाइ असां ईअं सम्झूं जे लाइ पुराणी जेका असांजी अस्पताल हुई उन साॻी जॻह ते उहा साॻी अस्पताल

करे छॾी तमामु। सुबुह जो इस्तेमालु कयो, हुन खां पोइ असां चांहि पीअण बंदि करे छॾी। असां डॉक्टर थी असां इन्हनि शयुनि खे इस्तेमालु कयोसीं गर्मी खां बचण जे लाइ, अवां बि इस्तेमालु करे सघोसि था। अच्छा, हिन में हिकिड़ी शइ ख़्यालु कजो, जेका ब्लड प्रेशर वारा आहिनि उहा लूण जो इस्तेमालु न कंदा, जेका शुगर वारा पेशेंट आहिनि उहा खंड जो इस्तेमालु न कंदा। ऐं हिन खां अलावा हिकिड़ी ॿी शइ, गर्मीअ में अवां गर्मी तेज़ गर्मी थिए पई उन में न निकिरो, मजबूरी आहे, निकिरणो थो पए, अवां मथे ते टुवाल ज़रूरु ॿधो। कंहिं जॻह ते पहुची था वञो त उन खां पाइण ते 2-3 मिंट न 5-10 मिंट अवां कंहिं पखे जे हेठि पियो, पघर आहे छो त जीअं तव्हां ईंदो पघर तव्हांखे ज़रूरु ईंदो, पघर सुकी पए त ई सम्झो तव्हांजो कमु थी वियो। उन खां बाद में पाणी जूस विझी सघो था, यकदमि इहा शइ नाहे खणी, इहा शइ यकदमि कंदव अव्हांजो ब्लड प्रेशर किरी पवंदो, अव्हांजो जिस्म ईअं थी वेंदो, तव्हां पाण सम्झी वेंदो त हाणे मूंखे थिए छा पियो। त हिन करे इन शइ जो बि एहतियात रखिजो। स्कूल वारा ॿार ज़रूरु खे एहतियात कनि, छो त हींअर स्कूलनि जी मोकल नथी आहे। मुंहिंजे हिसाब में 22-23 मई ते मोकलूं मिलंदियूं गर्मीअ जूं, त हाली जेका ॾींहं आहिनि 7-8 ॾींहं आहिनि, इन्हनि में ॿारनि खे जेॾी महिल स्कूल खां अचनि जूता लाहे छॾियो, मथां टोपी पाती आहे उहा लाहे छॾियो, बैग लाहे छॾियो, ऐं शर्ट पातल आहे उहो बि तव्हां लाहे छॾियो, ऐं जेका इहा शइ लाइन खां उनखे सुकून सां वेहणु ॾियो। पोइ पाणी जूस पाणी खां बहितरु आहे उन टाइम ते अवां जेको मां लिमकोल ठाहिणु अवांखे सेखारियो हो उन जो इस्तेमालु करायो छोकिरे खे। गर्मी में आयो आहे त हुनखे जेको लिमकोल मूं ठाहे तव्हांखे सेखारियो त हिकिड़ो चमचो लूण जो ऐं 4 चमचा खंड जा, हिकिड़ो लीमो या नारगी इहा शइ हुन में मिलाए मिक्स करे छॾिजो। 4 गिलास ताणी पाणी हुजे मिक्स करे ॿारनि खे पीआरियो। इहो बहितरीन टॉनिक आहे, बहितरीन शरबत आहे, जेको अवांजे जिस्म में पाणी निमकियात घटि थी वई आहे, शुगर घटि थी वई आहे, ब्लड प्रेशर घटि थिए पियो, उन्हनि सभिनी शयुनि खे बराबरि करे छॾिणो। उन खां बाद में विञारे छॾियो, पोइ कपिड़ा मटाए छॾियो। पर यादि रहे, टोपी पातल आहे उहो लाहे छॾिजो, बैग आहे उहो लाहे छॾिजो, जूता लाहे छॾिजो। इन्हनि सां फ़ाइदो थींदो त जिस्म में हवा जेका उहा लॻणु शुरू थींदी। अच्छा, छो हवा छो लॻंदी? साईं, मथे खे हवा लॻंदी, पेरनि में हवा लॻंदी, इहा बहितरीन इहा जॻहियूं जेका आहिनि उहा जॻहियूं आहिनि जंहिंसां हवा असांजे जिस्म खे लॻे थी, बाक़ी ॿिया जॻहियूं कम जी कोन्हनि। त विञारो न ॿारनि खे गर्मी में अचनि स्कूल में अचनि, न पाणी उनखे न पीआरियो, गर्मी में उनखे न विहारियो, पखे जे हेठि विहारे छॾियो, जिते हवा आहे उते विहारे छॾियो, ॿ 5-10 मिंट वेहे सुकून वटि, पोइ मां पाणी वाणी खणी थो अचां, पोइ हुनखे पाणी इहा शयूं घर थी वञो। अच्छा, स्कूल खां अचनि पाणी बि मूं ब्रेक सां तव्हांखे ॾियो आहे त यकदमि न पीआरिजो, त मानी बि यकदमि न ॾिजो, थोरो वक़फ़ो ॾेई पोइ कजो। ऐं गर्मियुनि में त असां डॉक्टर थी असां छा कयोसीं त जेका मंझंदि असां मानी खाईंदा आहियूं न उनजी जेका तव्हां असां छा सां मानी खाधी उहा सोची हैरान थी पवंदव। छो त असां डॉक्टर तव्हां ज़हन में इहो न थियो असां छिला खाईंदा न। गर्मीअ में असां छा कयोसीं त जंहिंमहिल मंझंदि जी मानी आई न, असां बसर लस्सी या अंबड़ियूं आयूं त उनखे चटणी करे उहा शइ उन सां मानी खाधी, लस्सी जो ढुक पीती मानी खाधी, इहा शइ असां इस्तेमालु कई इन गर्मीअ में। या दही बड़ा हूंदा आहिनि जेका दही खां ठहंदा आहिनि, या अहिड़ी शयूं असां इस्तेमालु कई, भाॼी न खाधी, वजह त गर्मी में अचूं पिया या शयूं खाईंदासीं रांदो ख़राबु थींदासीं। इहा शयूं इस्तेमालु कंदो, इहा हल्को खाधो आहे। ऐं मूं त हिकिड़ो ॾींहुं मूंखे यादि आहे त 2-3 ॾींहं अॻु में तमामु घणी गर्मी थी, माना ईअं सम्झो सूमरु वारे ॾींहुं, अॼु जुमो आहे सूमरु वारे ॾींहुं तमामु घणी गर्मी थी। त मूं इस्तेमालु छा कयो आहे, चांवर उन में मूंग जी दाल पचक विझी उहा चांवर ठाहियो, मथे दही विझी इहो खाधो मंझंदि जो गर्मी। वजह छा आहे, ॾिसो गर्मी तमामु घणी आहे, मानी गोश्त मुर्गियूं हीअ सभु छा आहे

सही गुज़ार इहो त पाण इहा इस्तेमालु करे के डॉक्टर वटि वञूं, हिन खां बहितर आहे असां इहे शइ इस्तेमालु कंदा डॉक्टर वटि वञण जी ज़रूरत न पए। अच्छा सामिन, का बि तकलीफ़ आहे, बीमारी आहे, जीअं का ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, या फालिज आहे, ज़ख़म आहिनि पुराणा ख़तमु न थियनि, ख़ारिश आहे, रत गड़ियूं आहिनि, या मादे जो का तकलीफ़ आहे, मादे जो को मसलो आहे, त उन्हनि सभिनी जो इलाजु असांजी क्लिनिक ते थी सघेसि थो। उन खां अलावा बे औलाद वारा जेका आहिनि उन्हनि खे त मां हींअर एडवाइस कंदुसि त तव्हां परेशान हरगिज़ न थियो, या डॉक्टर डॉक्टरीअ जा चकर अवां न कयो। अवां जे लाइ बहितरीन इलाजु जेको आहे उहा होम्योपैथिक में आहे। उन जी वजह छा आहे त मां पाण परेशान होसि हिन जे बारे में, छो त असां वटि पेशंट आहिनि सही बे औलाद वारा। उन्हनि खे मूं छा कयो आहे त उन्हनि खे मूं सिर्फ़ु इहा चई तव्हां जेके तकलीफ़ुनि मूंखे लिखाए छॾियो, दवा इलाज मां न कंदुसि। मूं हुननि खे जवाबु ॾिनो ऐं लिस्ट मूं वटि तमामु घणी थी वई त मां परेशान थियो त मूंखे हाणे इन जे बारे में पढ़णो लाज़मी आहे। त मूं इन जे बारे में स्टडी कई त असांजा होम्योपैथिक वारा दवाऊं ॾिसी मां पाण परेशान थी वियुसि त जंहिं औरत सां जेको मसइलो आहे उनजी दवा त असां वटि मौजूदु आहे, मां पेशेंट खे छो न पियो ॾियां। त इन मुताबिक़ अवां जेका बे औलाद वारा आहियो, मर्द तोड़े औरत पई, उन्हनि ॿिन्हिनि जो इलाजु थी सघे थो। ऐं जेॾीमहिल हिन में खोड़ अहिड़ी अहिड़ी शयूं आहिनि जेका असांजा डॉक्टर्स ऐं डॉक्टरनियूं असांखे ॿुधाइनि कोन थियूं, त अॼोको प्रोग्राम में मुंहिंजी कोशिशि रहंदी त उन्हनि नंढी नंढी शयुनि खे मां ॿुधायां, छो त वॾी शयूं FM ते ॿुधाइणु मज़ो नथो अचे। त इन करे कुझु अहिड़ी अहिड़ी शयूं मां अव्हांखे ॿुधायां थो जेका अव्हां में ज़रूरु कंहिं न कंहिं इहा शइ हूंदसि। मर्द आहे उनमें छा मूंखे थींदो आहे त जरासीम चवंदा आहिनि, जरासीम कढियोसि पासे में, जरासीम ज़रूरत ई कान्हे का, छो त जरासीम वारी ॻाल्हियूं सिर्फ़ु अव्हांखे परेशान करण जी। इन खां अलावा बि खोड़ शयूं आहिनि जंहिंजी कमी असां औलाद नथो थिए। लेडीज़ आहे, लेडीज़ में छा चवंदा आहिनि, मां लेडी जेका डॉक्टरनी आहिनि बाबा माहवारी सही कोन्हे, माहवारी खे तव्हां छॾियो। इन खां अलावा बि सही शयूं आहिनि जेके असांखे सही करणियूं आहिनि त औलाद थी सघे। माहवारी सही थींदी पोइ बि न थींदी, ऐं मर्द जा जरासीम सही थींदा पोइ बि न थींदी औलाद। इन में खोड़ ॿिया शयूं आहिनि जेका असांखे होम्योपैथिक वारनि जी जंहिंमहिल असां किताबु खोलियोसीं असां पाण चया थी वियासीं यार इहा शयुनि जो बि ॾिसणो आहे या भई खोड़ पेशंट मूं वटि उन शयुनि जा पिया हुआ यार, हीअ किताब चवे पई इहा पेशंट में हीअ शइ पूरी आहिनि त इन जी कमी आहे जंहिंजे करे औलाद न पई थिए। त असां वटि उहा पेशंट मौजूदु आहिनि, असां हाणे उन्हनि सभिनी खे चवंदासीं तव्हां परेशान न थियो, पंहिंजे टेस्टूं रिपोर्ट्स सां गॾु मूं वटि अचो। इनशाला असां डॉक्टरनि जो कमु इहो थींदो त जेका कमी जंहिंमें बि आहे असां उन कमीअ खे पूरो कंदासूं, छो त अव्हांखे ख़बर आहे शिफ़ा ॾियण जी ज़ात अलाह जी आहे, औलाद ॾियण जी ज़ात अलाह जी आहे, पोइ छोकिरो ॾे छोकिरी ॾे उहा उन जो कमु आहे। असांजो कमु ऐं अव्हांजो कमु सिर्फ़ु इहो ई आहे हीलो वसीलो। हीलो वसीलो छा आहे त जेका जंहिंमें कमी आहे उहो पूरो करणु, दवाऊं ॾियणु असांजो कमु आहे, खाधे इस्तेमालु करणु अव्हांजो कमु आहे। पोइ जेॾीमहिल नसीबु थियो अची पवंदो औलाद, बाक़ी परेशान थियो अलाह इनशाला अवां ज़रूरु ख़ुशिखबरी ॿुधंदा। असांजे प्रोग्राम में कुझु ॻाल्हियूं गर्मी जे हवाले सां हुयूं, कुझु अव्हांजी बे औलादी जे हवाले सां कुझु शयूं मूं रखियूं आहे साम्हूं। ऐं उन खां अलावा पेशंट जेका आहिनि असां वटि जेको ईंदा आहिनि OPD में, हुन पासे सकण वारी क्लिनिक ते आया हुआ, हाणे उहे हेॾा ईंदा त उन सकण वारी क्लिनिक ते पेशंट जो जेको रुझान हो उहो माशाल्लाह तमामु बहितरीन हो। OPD माशाल्लाह तमामु सुठी हुई असांजी। ऐं उन खां अलावा केस असां वटि तमामु एतिरा केस हुआ त एलोपैथिक वारा जेका दवाऊं उन्हनि खां बस थी वई, ऐं असांजी होम्योपैथिक वारी दवाऊं उन्हनि खे तमामु घणो बहितरीन रिज़ल्ट ॾिनो। हुन में वजह छा आहे त असांजी होम्योपैथिक जी फस्ट में फस्ट प्योरिटी, माना फस्ट में फस्ट हुनजो चवणु इहो आहे सिहत, सिहत ज़िंदगी ख़ुशहाल, सिहत ख़ुशहाल, पेशंट ख़ुशहाल, होम्योपैथिक ख़ुशहाल। सभिनी खां पहिरियों हुनजो इहो हूंदो आहे त इहा कुदरती इलाजु आहे, कुदरती तरीक़े सां दवाऊं ठहंदियूं आहिनि, कुदरती शयुनि खां दवाऊं ठहंदियूं आहिनि, इन करे इन में साइड इफ़ेक्ट नुक़सान वारी का ॻाल्हि आहे ई कोन, इनखे तव्हां ज़हन मां कढी छॾो। ॿियो इहो चवंदा आहिनि त असांजी पहिरीं प्योरिटी इहा आहे त असांजी पेशंट जेको आहे उनखे सिहत थिए, उनजी ख़ुशहाली थिए, सिहतमंद थिए पेशंट। त उन जे लाइ अवां परेशान थियो, होम्योपैथिक जो सभिनी खां पहिरीं किरदारु इहो ई आहे त पेशंट जी सिहत बहाल थिए। सिहत बहाल थींदी त हू बीमारियूं पंहिंजे पाण गुम थी वेंदियूं, ऐं सिहत बहाल करण जे लाइ असां वटि जेका मेडिसन्स आहिनि दवाऊं 100% रिज़ल्ट वारियूं आहिनि, कंहिं बि साइड इफ़ेक्ट्स खां पाक कनि, तव्हां परेशान नथा थी सघो। होम्योपैथिक दवाउनि खां अव्हांखे इनशाला फ़ाइदो ज़रूरु मिलंदो। बहरहाल सुभाणे छंछरु वरी आचर आहे, ॿई ॾींहुं असां फ्री रखियो आहे चेकअप जेको असां रखंदा आहियूं, ऐं उन खां अलावा जेको फीस आहे मशीन जी उहा असां अधु कंदा आहियूं हर छंछरु ऐं आचर। इहो असांजो रूट जेको हले पियो, बाक़ी जेका आहे हाणे हेॾां शिफ्टिंग थी आहे त इन में थी सघे असां हीउ छंछरु ऐं आचर फ्री चेकअप वरिणो आहे, इहो रुझान असांजो ख़तमु थी सघे थो।
उन वजह है तो कुछ मामला अड़ा तो जैसे करें छंछर या

0: फ्री चेकअप असांखे बंदि करिणो पवंदो। बहरहाल इंशाल्लाह असांजी टीम जेका आहे उहा इन कम ते लॻल आहे त इहा छंछरु आचर जेका असांजो यको हले पियो इन खे बंदि न कयूं। बाकर दुआ कयो त इहो असांजो कमु थी बंदि त हेॾां जा जेका मामला अथनि जेका हालात उन्हनि खे ज़रूरु ॾिसणो। कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेका पर्सनल आहिनि जंहिंजे बारे में असां नथा चई सघूं छो त कंहिंजी दिलि ज़ारी थी सघे थी। इन जे करे असांखे छंछरु ऐं आचर खे असांखे फ्री चेकअप खे हटाइणो थो पए। बाक़ी मां मुंहिंजी पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदुसि त इहा छंछरु आचर जेको मुंहिंजो फ्री हले पियो चारि साल खां इहो हले इनखे मां बंदि न कंदुसि। बाक़ी अलाह मालिक आहे।
1: जीअं समीन अवां ॿुधो पिया जीअं सकनि नवाब शाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां। जीअं समीन डॉक्टर साहिब जी हाणे क्लिनिक आहे। हा जी, इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक जी एड्रेस स्टेशन रोड सकरण। हा जी, इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। डॉक्टर साहब जी वेहण जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां 6 वॻे ताईं। जीअं समीन डॉक्टर साहब सुबुह जो 9 खां 6 वॻे ते मौजूदु हूंदा क्लिनिक ते, ऐं जुमे वारे ॾींहुं बि काई मोकल कान्हे का। जुमे वारे ॾींहुं बि डॉक्टर साहब मंझंदि 12 वॻे ताईं मौजूदु हूंदा। हर छंछरु आचर ते बि जीअं डॉक्टर साहब मौजूदु हूंदा आहिनि ईअं ई मौजूदु हूंदा, यानी सुबुह जो 9 खां 6 वॻे ताईं। पर हिन मां मूंखे इहो नोट कराईंदो हलां त डॉक्टर साहब वटि मेडिकल स्टोर ॿाहिरि लॻियलु आहे। उहो डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जी निशानी आहे। उतां ई नंढिड़ो दरवाज़ो आहे, एॾो नंढो त कोन्हे, मतिलबु मेडिकल स्टोर सां गॾो गॾु साॼे पासे बि मेडिकल स्टोर आहे, खाॿे पासे बि मेडिकल स्टोर आहे। अंदरि डॉक्टर साहब ॾे क्लिनिक जो दरवाज़ो आहे, ॿाहिरि बोर्ड हूंदो, यानी सुभाणे त न हूंदो पर आईंदा ॾींहंनि में बोर्ड मौजूदु हूंदो, ऐं डॉक्टर साहिब ॾे तव्हां कॉल करे वधीक मालूमात वठी सघो था। समिन छंछरु आचर ते जेको सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक ते फ्री चेकअप हूंदो उहो हिते न हूंदो, छो जो क्लिनिक स्विच कई वई आहे। उते अजय समिन नई क्लिनिक नओं सेटअप आहे त उते जेको आहे त फ्री चेकअप जो फ़िलहालु कोई सिस्टम कोन्हे। आईंदा हली अॻिते इन बारे में डिस्कस करे ऐं पोइ सोचियो वेंदो। समीन डॉक्टर साहब तव्हांजे लाइ फ्री ॾींहुं ज़रूरु रखंदा आहिनि त उन बारे में सोचियो ज़रूरु वेंदो, पर हिन वक़्तु जेको सुभाणे छंछरु आचर आहे उन में कोई फ्री चेकअप कोन्हे को। तव्हां ईंदा पंहिंजो चेकअप फीस ॾेई पंहिंजो इलाजु कराईंदा। जीअं समीन होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में पंहिंजो इलाजु करायो, पाण खे सिहतमंद बणायो।

0: डॉक्टर साहब हर बीमारी जो माहिर मशहूर डॉक्टर है तवा होम्योपैथिक तरीका इलाज सा पंजो इलाज कराए सको था डॉक्टर साहब का दवा वठी सको था सामे वक्त जो एहसास प्रोग्राम से जी गाल जो भी वक्त पहुंचे तो पंजो पुजानी थे जले भी तो हालात खणो पंजे मेजबान सलीम अहमद सरगान के दौर में जरूर याद रख जो जिंदगी अगर साथ रेनो बे प्रोग्राम में तो सवा सगद देसी मुखे दीदा इजाजत सदाई गद अल्लाह वाही अलल गेबान जेडा पैर तेडा खैरो खैर
1: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे से रवानो। सिक्योरिटी जरिए मूजिब फील्ड मार्शल ईरान की आला क्यादत से मुलाकातू कंदो। मुलाकातों में ईरान अमरीका गालन ही खिते की सूरतहाल से गाल बोल कई वी। बे पास अमरीकी परदेही वजीर मार्को रूबियो है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान वही रो है और असा भी लागीतो राबते में है। ईरान से डील पहरी तरजीह है। उम्मीद त ईरान से मुहिदो तय थी वो। तेहरान में वफाकी घर वजीर मोहसन नकवी की ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची से अज बीहर मुलाकात। ईरानी मीडिया मूजिब मुलाकात दौरान अमरीका ईरान तकरार के हल लाए तजवीजों से ख्यालन की देवट कई हुई। ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो है तो अमरीका से गालन जो मरकज रुगो जंग के खात्मे ते आहे। यूरेनियम के जखीरन ते गालू नाहन थियूं। मीडिया से हलंदड़ खबरू अफवाह आहिनि।

अमेरिका पारां ईरान ते हमले लाइ पाकिस्तान खां फिज़ाई हदूं घुरण जो को बि मुतालबो न कयो वियो आहे। ईरान ते हमले लाइ पाकिस्तान जूं फिज़ाई हदूं इस्तेमालु करण लाइ अमेरिका जे कंहिं बि मुतालबे जी ख़बर नाहे। असां अमेरिका ऐं ईरान विच में अमुन ॻाल्हियुनि लाइ सहूलतकारी फ़राहम करे रहिया आहियूं। परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदुराबी जी हफ़्तेवार ब्रीफिंग। परॾेही तर्जुमान चयो त पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिकु फुड़े ते बि समझूतो न कंदो। भारत सिंधु तास मुआदे मां निकिरे नथो सघे। अरब इमारात मां पाकिस्तानी शहरनि खे नेकाली ॾियण जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। इल्ज़ामनि खे रदि कयूं था। पाक अफ़गान लाॻापन में छिकताण जो बुनियादी सबबु दहशतगर्दी आहे। अफ़गान तालिबान हुकूमत पाकिस्तान अंदरि दहशतगर्द हमलनि जी सहूलतकार आहे। अफ़गान तालिबान हुकूमत लिखत में ख़ातिरी कराए त अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ु इस्तेमालु न थींदी।

हुकूमत रवैयो तब्दील न कयो त मुल्क में तमामु वॾी तहरीक हलंदी, सभिनी खे पछताइणो पवंदो। ख्वाजा आसिफ़ खे चवां थो त गॾिजी वेहूं, पार्लियामेंट खे मज़बूत बणायो, असां हिमायत लाइ तयारु आहियूं। अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई जो क़ौमी असेंबली जे इजलास में ख़्यालनि जो इज़हार। महमूद अचकज़ई चयो त PTI बानी सां मुलाक़ातुनि तां पाबंदी हटायो, माहौल पाण ई बहितर थी वेंदो, मुल्क जी सूरत हाल ख़राबु आहे।

कराची जा मसला कंहिं ॿिए शहर में वेही हल नथा करे सघजनि, कंहिं ॿिए शहर खे त धार करण जी ॻाल्हि ई नथी आहे। असां चऊं था त अचो त गॾिजी कमु करियूं, पर जेकॾहिं तव्हांखे रुॻो विढ़णो आहे त पीपल्स पार्टी विढ़ण बि ॼाणे थी। पीपी चेयरमैन जो काठोड़ वटि शार आहे भुट्टो जी इफ़्तिताही तकरीब खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त मुंहिंजे सूबे ख़िलाफ़ का बि कोशिश थी त उनखे नाकाम बणाए वेंदो। सियासी यतीमनि जो कमु ई साज़िश करणु आहे। जियाला संदन साज़िशुनि ते ध्यानु न ॾियनि। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सां बंदरगाहूं ठाहियूं वेंदियूं। केटी बंदर पोर्ट दुनिया जो पहिरियों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत हूंदो। पाकिस्तान खे बंदरगाहुनि जो ढांचो बहितर करणो पवंदो। पीपी चेयरमैन चयो त खिते में जंग जो बार ग़रीब आवाम खणी रहियो आहे। दुआ आहे त जंग बदी जूं कोशिशूं कामयाबु थियनि। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तकरार हल करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। जंग बंदी थियणु घुरिजे त जीअं आवाम जो मुआशी ॾुखियाऊं घटिजी वञनि। पिशावर जी निंगरी खे कराची मां अगवा करण बाद शिकारपुर जे कचे में मुगवी बणायो वियो। निंगरी जी अमर धीउ जी बाज़ियाबी लाइ 15 लख रुपया खणी कचे में वेही त साणस ज़्यादती कई वई। क़ौमी असेंबली में पीटीआई मेंबर जो एतिजाज। साहिबज़ादा सिबकतुल्लाह चयो त पिशावर जे 10 सालनि जी ॿाड़ी सिंध जे कचे में बांधी बणियल आहे। हुकूमती रिट किथे आहे? ॿाड़ीअ जी माउ 15 लख खणी धीउ खे बाज़ियाब कराइण लाइ कचे वेही त धाड़ेलनि 10 ॾींहनि ताईं साणस ज़्यादती कई। पख़्तूननि जी इज़त में हथ विधा विया आहिनि। हुकूमत कुझु न कयो त केपी जो आवाम पाण कार्रवाई कंदो। घरू मामलनि बाबति ममलकती वज़ीर क़ौमी असेंबली में चयो त पिशावर वासी निंगरी जी बाज़ियाबी लाइ सिंध जे कचे में ऑपरेशन जारी आहे। अॼु बि हिकु धाड़ेल मारिजी वियो। ॿाड़ी शिकारपुर जे कोट शाहू थाणे जी हद में मुगवी बणियल आहे। ॿाड़ी अली गोहर नाले धाड़ेल वटि आहे। कबीले जा माण्हू चवनि था त हुननि ॿाड़ीअ खे माउ खां ख़रीद कयो आहे। ॿाड़ीअ जे अॻवा में मुलविस कुझु औरतुनि खे हिरासत में वरितो वियो आहे।

अनमोल उर्फ पिंकी अरिड़ह केसर में जुडिशल रिमांड ते जेल हवाले। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत पुलिस की इस्तदा रद्द कर छी। जांच ऑफिसर्स का चालान तलब। अदालत जांच ऑफिसर्स के हिदायत कई तंदड़ बुधड़ी से समूरन केसन जो चालान पेश किया वे। पुलिस सख्त सिक्योरिटी में पिंकी के सेंट्रल जेल कराची जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश कर। दरकशाह गिजरी और बगदादी थानन जा जांच ऑफिसर अदालत आदो पेश थे। जांच ऑफिसर अदालत के आगाह किया तो जांच में अग भराई थी है। मालूमात हासिल कई पी वे। जांच मुकम्मल करण लाए जिस्मानी रिमांड में वाध कई वे।

पीपल्स पार्टी के पीटीआई पारा 12 मई के वाक्यन बाबत पेश कल करारदाद से इनकार न करण घुर्जे हा मूं करारदाद से गालायण पे घुरो शहीद कारकुनन के वारसन के पैगाम दियण पे घुरो तवासा गड आयूं पीटीआई वारा मुशरफ सा गड हुआ पर जडे हुनन जे मेंबर 12 मई बाबत ठहराव पेश कयो त पीपी के इनकार न करण घुर्जे हा पीटीआई मेंबर जो ठहराव रद्द थियण बाद मुंजो गालायण गैर जरूरी हो उन करे असेंबली मां वॉकआउट कयो पीपी सिंध सदर निसार खोड़ो जो सिंध असेंबली बाहरा मीडिया सा गालू निसार खोड़ो चयो त वाबडा माई का तवक ना है त बजट लाए वफाक मां के

पारां पाक चीन दोस्ती खे भेटा पेश करण वारो ठहराव इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण चयो त पाक चीन दोस्ती जा 75 साल मुकमल थियण ते हुकूमत ऐं अपोज़िशन जी गॾियल ठहराव जी हिमायत कयूं था। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी जे दौर में पाक चीन लाॻापा वधीक मज़बूत थिया। सीपेक जो बुनियादु सदर आसिफ अली ज़रदारी रखियो। सदर तालीमी निसाब में बि चीनी ॿोली खे शामिलु करायो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि माहिरा ऐं धरणा जिकमाबाद, कंडकोट, कंबर, उमरकोट, सखर, बदीन, सांगड़ ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा करे धरणा हया विया। अॻवाननि चयो त आम वाहिपे जी शयुनि जा अघ आसमान ते पहुची विया आहिनि। ग़रीब माण्हू आपघात करण ते मजबूर आहिनि। फौरी तौरु पेट्रोल ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं घटि करे रिलीफ ॾिनो वञे। बख्शापुर जे कचे वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो, 3 गर्भाती क़तल। ॻोठु ईदू भंगवार में हथियारबंदनि घर ते हमिलो करे नौजवान मेहर अली भंगवार, संदसि ज़ाल आलमा ऐं भाउ ग़ुलाम फरीद खे क़तलु कयो। वारसनि पाण मुरादो डाटसन में लाश खणाए थाणे ते पहुचाया। लेटर मिलण बाद लाश कंदकोट इस्पताल मुंतकिल कया विया। पोस्टमार्टम बाद लाश वारसनि हवाले। पुलिस मूजिबि वारसनि जो चवणु आहे त पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि सां चौपाए माल तां तकरार हलंदड़ हो। 1 साल अॻु अली जान भंगवार क़तलु थी वियो हो। वाके जी वधीक जांच कई पई वञे। सूबाई घर वज़ीर ज़ियाल अंजार SSP कश्मीर खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। वाके में मुलविस जवाबदारनि खे फौरी तौरु गिरफ़्तार करण जी हिदायत।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सामीन व नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
2: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज से शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाँ अवजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालिज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते 0327-89-84-763।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
4: GAFM 88
3: नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेस।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

कराची जा मसला कें बे शहर में वेही हल नथा करे सकजन कें बे शहर के त धारखण जी गाल नथी आहे असां चाहूं था अचो त गॾिजी कमु करियूं पर जेकॾहिं तव्हांखे रुॻो विहणो आहे त पीपुल्स पार्टी विहण बि ॼाणे थी पीपी चेयरमैन जो काठोड़ वटि शाराए भुट्टो जिप्त ताईं तकरीब खे ख़िताब बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त मुंहिंजे सूबे ख़िलाफ़ु का बि कोशिशि थी त हुनखे नाकाम बणाए वेंदो सियासी यतीमनि जो कमु ई साज़िश करणु आहे जयाला संदनि साज़िशनि ते ध्यानु न ॾियनि सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सां बंदरगाहूं ठाहियूं वेंदियूं कैडी बंदर पोर्ट दुनिया जो पहिरियों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत हूंदो पाकिस्तान के बंदरगाहन जो ढांचो बेहतर करणो पवंदो

बीजेपी चेयरमैन चयो त खिते में जंग जो बार गरीब आवाम खणी रहियो आहे। दुआ आहे त जंगबंदी जूं कोशिशूं कामयाबु थियनि। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तकरार हल करण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। जंगबंदी थियणु घुरिजे त जीअं आवाम जूं माशी ॾुखियाऊं घटिजी वञनि।

0: हुकूमत रवैयो तब्दील न कयो त मुल्क में तमामु वॾी तरीक़ हलंदी, सभिनी खे पछताइणो पवंदो। फजासब खे चवां थो त घटिजी वियो, पार्लियामेंट खे मज़बूत बणायो, असां हिमायत लाइ तयारु आहियूं। अपोज़िशन लीडर महमूद खान अचकज़ई जो क़ौमी असेंबली जे इजलास में ख़्यालनि जो इज़हार। महमूद अचकज़ई चयो त पीटीआई बानी सां मुलाक़ातुनि तां पाबंदी हटायो, माहौल पाण ई बहितर थी वेंदो, मुल्क जी सूरत हाल ख़राबु आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।